1952 की फिल्म बैजू बारा, मीना कुमारी और भारतभूषण की फिल्म, संगीतकार नौशाद, गीतकार शाकिल वदियों ने, लता मंगेशकर, रफी और साथ में शमशाद बेगम। और अब चलो एग्जैक्टली 70 years ago फिल्म बरसात हिट द बिग स्क्रीन 1949। राज कपूर नरगिस ऑफ कोर्स डोमिनेटेड दैट एरा। शंकर जयकिशन के संगीत पर हजरत जयपुरी, गीतकार आवाज लता मंगेशकर।

इन 49 की फिल्म बरसात नरगिस और राज कपूर पर्दे पर, शंकर जय कृष्ण संगीतकार, गीतकार हजरत जयपुरी, आवाज लता मंगेशकर, संगीत की झनकार की दूसरी भाग में आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 40s, 50s एंड 60s। ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, ऐसे गीत जो जिसको सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, ऐसे गीत जिसको सुनकर आप संगीत की झनकार को सुनना चाहते हैं।

0: ये सेंचुरी एगो मोर देन 75 इयर्स अगो फिल्म रतन अमीर बानू करण दीवान और सोनू लता संगीतकार नौशाद और गीतकार डी एन मधोक लता मंगेशकर के साथ जोहरा बाई अंबाली वाली जोहरा बाई अंबाली वाली लता मंगेशकर के साथ 1944 की फिल्म आप सुन रहे थे संगीत की जानकार की अंतर्गत
1: दिल दिल से मिला कर देखो
2: यह है रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बन ब्रिस्बन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन
1: अपना तो बना कर देखो
2: जी हाँ अपना तो बना कर देखो वी प्रेजेंट यू डिसाइड यू फोन अस ऑन 3279-1701 We listen to you because you listen to us.
3: Radio Sangeet Ki Jankar, Manoranjan, Sanskriti aur Samachar.
4: Hey, jee,

0: बदल गई।
1: 1955 के फिल्म मिस्टर और मिसेस 55, पर्दे पर गुरुदत्त और मधुबाला, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और आवाज मोहम्मद रफी, एंड ऑफ कोर्स संगीतकार फेमस ओपिनियर। ओपिनियर स्पेसिस टू द पिनिकल ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री इन बॉलीवुड वाज हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज एज ही एक्सप्लेन्स इन हिज ओन वॉइस।
2: लाहौर में पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से ब्रॉडकास्ट किया करता था एज ए सिंगर
3: जी।
2: आई वाज क्वाइट ए पॉपुलर आर्टिस्ट
3: जी।
2: तो उन दिनों जवानी में जरा कुछ दिखने में ठीक लगता था मैं, तो ख्याल आया कि भाई चलो हीरो वीरो बनेंगे,
3: अच्छा
2: चल के फिल्मों में कुछ तकदीर आजमाएंगे। तो शाम एक आर्टिस्ट थे
3: जी,
2: जो अपने शशाधर मुखर्जी के पास कई फिल्मों में काम किए, और उनका एक पेयर बड़ा मशहूर होता शाम और मुनव्वर सुल्ताना उन दिनों
3: जी जी।
2: तो मेरे वो लाहौर में दोस्त थे
3: जी,
2: तो उन्होंने मुझे मुखर्जी साहब से इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये कंपोजर है और सुनिए इनको। तो वो बोले कि इसे इसको म्यूजिक बनाने का शौक है, ट्राई कीजिए। तो मैंने कहा जी साहब पहले म्यूजिक की बाद में करेंगे बात, पहले आप जरा मेरा स्क्रीन टेस्ट लीजिए, मुझको हीरो बनने का शौक है। तो जनाब टेस्ट लिया गया तो देखा कि नहीं यार, वो दिखने में तुम जरा ठीक लगते हो, स्क्रीन के ऊपर वो बात नहीं है। तो फौरन तर्क कर दिया, फिर म्यूजिक डायरेक्टर का बनने का शौक पैदा हुआ। तो मुखर्जी साहब ने मुझे भेज दिया कि भाई जाओ उधर स्टूडियो में, तुमको गाना देते हैं उसकी धुन बनाओ। तो अभी तक मुझे वो गाना याद है, राजा महदी अली खां का लिखा हुआ, बाहें बाहों में पड़कर बालम किसी गले का हार हुई, यह ना किसी से कहना बालम कैसे आंखें चार हुई। तो वो गाना हम बना के लेके गए और मुकुल साहब ने रिजेक्ट कर दिया, वाह नहीं नहीं नहीं कुछ दम नहीं इसमें, चले गए। फिर शाम को शाम से कहा यार ये बहुत कड़क आदमी है शशाधर मुखर्जी, और रिजेक्ट कर दिया मेरे को। कहता चलो अगले दिन फिर ले गए कि यार वो लड़का बड़ा सेंसिटिव है, जरा म्यूजिक म्यूजिक का बात करो। तो कहने लगा नहीं वो कुछ उसमें हमको जमा नहीं है, कुछ उसमें दम नहीं लगता। अब तकदीर देखिए कहाँ खेल करती है, कट टू कट हमारा फिल्म आर पार चली और नाम हो गया।
1: जी हाँ, फिल्म आर पार के बाद as they say, the rest is history।

Yes, the film that launched Obinayer's career, film Arpar, as he explained before. और अब चलो उसी फिल्म से निकाली हुई एक और बहुत ही लोकप्रिय संगीत जिसको हम इस प्रोग्राम में शायद पहले भी एक दो बार पेश कर चुके हैं.

0: की सांसें हैं। रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा। इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए, आपने बना लिया है गहरा संबंध। सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा। इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए।
1: तो चलो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस बार हम पेश कर रहे हैं आपके लिए 1955 की फिल्म आजाद। दिलीप कुमार पर्दे पर मीना कुमारी के साथ, सी रामचंद्र के संगीत पर राजेंद्र कृष्ण गीतकार चितलकर और लता मंगेशकर की आवाज। कितना हसी है मौसम। एक्चुअली इट्स क्लाउडी आउट देयर बट ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। यह है संगीत की झनकार, आपके साथ फिरोज खान।

1955 की फिल्म आजाद, दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर्दे पर, सी रामचंद्र के संगीत पर, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और आवाज चितलकर के साथ लता मंगेशकर। और इस बार नीली 70 इयर्स अगो 1951 फिल्म बहार, जस्ट लिसन टू द कास्ट, पर्दे पर जस्ट इमेजिन, वैजयंती माला, करण दीवान, बेबी तस्सुम, ओम प्रकाश, पद्मनी, प्राण, सुंदर, जी हाँ, कैन यू इमेजिन, कैन यू विजुअलाइज, वो वही यू व्हेन यू वॉच द मंदिर ऑन द स्क्रीन, पर्दे पर विजयंती माला, करण दीवान, बेबी तबस्सुम, ओम प्रकाश, पद्मनी, प्राण और सुंदर, एस डी परमर के संगीत पर शमशाद बेगम, 1951 की फिल्म बहार।

जी हाँ, 1951 नीली 70 years ago फिल्म बहार, पर्दे पर वैजयंती माला, करण दीवान, बेबी, तबस्सुम, ओम प्रकाश, पद्मनी, प्राण और सुंदर, फिल्म बहार। और अब चलो एक खास फरमाइश लेकर, हमारी बहुत ही रेगुलर लिस्नर फरमाइश किया है, लगता है यादों का सफर पर जाना चाहते हैं। दूर पहाड़ों के बादल उलझे उलझे गुलपोश चमन, चुपचाप से तुम गुमसान से हम अरमान अचलने लगते हैं। भूले बिसरे यादों के लिए चलो हम दोनों यादों का सफर पर चलते हैं।

ये गीत और ये फरमाइश तो हमारा भी मूड बदल दिया है, और हमारे क्यों ना इस मूड को जारी रखते हुए आपके लिए वही फिल्म गुमराह, जिसको मैं बार बार देखता हूं, उससे निकाली हुई कुछ चुने हुए संगीत आपके लिए पेश करते हैं अगले 10 मिनट के लिए। लगता आप भी काफी गुमसाम हैं, तो चलो सब हम मिलकर थोड़ी सी पोज लेते हैं 12 बजे तक, और अपनी अपनी ख्याल में डूब जाते हैं।

ये है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आप सुन रहे हैं संगीत की जानकार, जिसको हम शुरू करते हैं रविवार की सुबह, हर रविवार की सुबह 10 से। और आप सुनते हैं संगीत की जानकार स्टेशन पर 10 से लेकर 12 बजे तक। 10 से लेकर 11 बजे तक आप सुनते हैं गीत संगीत शायरी और गजलों का एक हसीन संगम, शेर नगमा, आपकी मेजबान हफीज अली खान के साथ। हफीज अली खान आपके प्रोग्राम में आपको भी सारे शामिल करते हैं शेर शायरी लेकर। लेकिन अभी तो 11 बज चुका है ना, तो 11 बजे जी हाँ 11 बजे से हम आपका मूड बदलते हैं। फुट टैपिंग म्यूजिक उन मेलेडी वॉज सुप्रीम 50s 60s 70s से निकली हुई गीतमाला, एक लम्हा साथ तुम्हारे, साज और आवाज़।

अक्सर हम आपका साथ देते हैं रविवार की सुबह 5 से लेकर शुरुआत करते हैं 5 से डिवोशनल संगीत, उसके बाद मजहबी कवालियां, मजहबी कवालियों के बाद 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं इस्लामिक प्रोग्राम वेदवाणी। आप सुन सकते हैं 8 से लेकर 9 बजे तक और 9 बजे से 10 बजे तक चिट्ठी पत्री जतीश और कमल के साथ, और फिर 10 से लेकर 12 बजे तक संगीत की झनकार, और संगीत की झनकार के बाद आप सुनते हैं बिली जिले संगीत रोहित सिंह के साथ और फिर सुशीला के साथ, और बाद में प्रभा मिश्रा भी आपके साथ देते हैं। बहुत खूब रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर हर रविवार को

खास तौर पर स्वागत करते हैं उन श्रोताओं को जो अक्सर हमारा प्रोग्राम हर रविवार की सुबह 9 से लेकर के 10 बजे तक रेडियो 4 EB पर 80s में सुना करते थे।

0: बीते 5 मिनट के लिए आपके मूड बदलने के लिए आप सुन रहे थे ये बहुत ही पॉपुलर फैमिली मूवी है। मूड आपका तैयार है ना हमारी प्रोग्राम सुनने के लिए? आप सब सुनने वालों को नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई आई

0: असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

फिल्म सोलह साल से निकाली हुई आप सुन रहे थे अभी हेमंत कुमार को, संगीतकार एस डी वर्मन, गीतकार मजरू सुल्तान फरीस, आनंद देवानंद और वहीदा रहमान की फिल्म सोलह साल। संगीत ताल और मेलोडी का एक संगम है। आज के संगीत पर पिकेशन और रिदम का राज, रैप म्यूजिक और अय्या रहमान का म्यूजिक, सब पर रिदम और ताल का ही राज है। लेकिन पहले धुन यानी कि मेलोडी संगीत का जान माना जाता था, और अब हम आपको ले चलेंगे उस दौर पर जब मेलोडी संगीत का जान माना जाता था, यानी कि व्हेन मेलोडी वाज सुप्रीम।

रेडियो ब्रिजवाणी 1701 ब्रिजबन। और अब साल 1951, फिल्म बहार, पर्दे पर विजयंती माला, करण, दीवान, तबस्सुम, ओम प्रकाश, प्राण और पद्मनी। फिल्म बहार।

राजबन के आना रे मोहे लेके जाना रे व्हाट अ ड्रीम 1951 की फिल्म बाहर से निकाली हुई भी आप सुन रहे थे। संगीतकार एस डी बर्मन और आवाज शमशाद बेगम। संगीत की जानकार 79 ब्रिजबन पर आप सुन रहे हैं व्हेन

0: और इसके साथ साथ हम संगीत के जानकार को यहीं, इसके साथ साथ हम अपने हिट्स ऑफ 40s, 50s, 60s को यहीं छोड़ रहे हैं और छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। वापस आएंगे तो जारी रखेंगे संगीत की जानकार, जिसके अंतर्गत हर सप्ते की तरह द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड हिट्स ऑफ 90s। यह है संगीत की जानकार और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। फिलहाल हमारे स्टूडियो में करीबन 11:30 बज चुके हैं।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबको स्वागत हो संगीत की जानकार में। और इस बार संगीत की जानकार वादे के मुताबिक द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड हिट्स ऑफ 90s। जी हाँ, अभी से लेकर 12:30 बजे तक आपके लिए हिट्स ऑफ 90s।

संगीत की झंकार को हम शुरुआत करते हैं गीत माला से। सरल संगीत आज रात हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास्ट हिट भी आपने सुना फिल्म जुर्म, और सरल संगीत हिट्स ऑफ 90s को जारी रखते हुए अब

0: आपने हमको चुना तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं माला से, गीत माला, अनमोल नगमे, नए पुराने फिल्मों के गाने गीत माला में।
1: और गीत माला में आज रात आपके लिए सरल संगीत, रीसेंट पास्ट हिट्स, हिट्स ऑफ 90s से निकाली हुई, भी आपने सुना फिल्म मिलन। और अब शामिल करते हैं नाना पाटेकर, सलमान खान की फिल्म खामोशी। यह है संगीत की जानकार, आपके साथ फिरोज खान। गीत संगीत शायरी और गजल का एक हसीन संगम, शेर नगमा और बात में यादों का सफर। साथ दीजिए बहुत खूब संगीत की जानकार 79.1 ब्रिज पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
2: ये है संगीत की जानकारी।

ये है 1701। आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास्ट हिट, ऐसे गीत जो हिट ब्रेक में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे ही गीत से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं, रिसेंट पास्ट हिट्स और हिट्स ऑफ 90s, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है। जी हाँ, गीत माला में आप शामिल करते हैं फिल्म अकेले हम अकेले तुम। ये है फिल्म अकेले हम

0: वन ब्रिस्बेन पर आप सुन रहे हैं रिसेंट पास्ट हिट्स ऑफ 90s फिरोज खान के साथ।
1: फिलहाल गीत माला को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर वही लोकप्रिय कलाकार हेलन, नाना पाटेकर और सलमान खान की फिल्म खामोशी से निकाली हुई एक और सरल हिट ऑफ 90s। यह है संगीत की जानकार आपके साथ फिरोज खान।

0: हांजी प्रोग्राम का शुरुआत पंजाबी की तारीफ से सोनू निगम और जसविंदर नूरवाला की आवाजों में संगीत की झनकार पर
1: फिलहाल हिट्स ऑफ 90s में अब शामिल कर रहे हैं एक रिश्ते को। तो पंजाबी की तारीफ सुन चुके, अब एक रिश्ता में मोहब्बत मोहब्बत को पुकार रही है मेलोडियस कॉम्बो नदीम श्रवण के मीठे मधुर संगीत पर कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें।

0: फिल्म फेयर अवार्ड और क्रिटिक्स अवार्ड की विजेता करिश्मा कपूर और उनके साथ अक्षय कुमार के लिए फिल्म एक रिश्ता में अलका याग्निक और साथ में उदित नारायण की आवाजें।
1: हिट्स ऑफ 90s ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुकी हो।
0: डेफिनेटली ये वो गीत है जो रेडियो नवतरंग में इतना लोकप्रिय हुआ और साथ में FM 96 और उसके सिस्टर स्टेशन BPFM में भी बजता है।
1: जी हाँ, जस्ट स्माइल अ लिटिल, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए शान।

0: सिंगिंग करियर की शुरुआत इसी गीत से हुई, फिल्म प्यार में कभी कभी।
1: रेडियो संगीत की जानकार, मनोरंजन, संस्कृति और समाचार। यह है संगीत की जानकार और आप सुन रहे हैं रीसेंट पास्ट हिट्स।
2: आगे चल के यादों का सफर, लेकिन हिट्स ऑफ 90s और रीसेंट पास्ट हिट्स के अंतर्गत इस बार नूर।
0: और इस बार आ रहे हैं डेडली दत्त, संजय दत्त, और इनके सपने में एक गुड़िया आती है।

0: मेरा फेवरेट मेल सिंगर 1997 के बेस्ट प्लेयर सिंगर अभिजीत की आवाज फिल्म अभागी का गीत साजिद वाजिद के संगीत पर, संगीत की झनकार पर हिट्स ऑफ 90s।
1: घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा उसके घर में जाऊंगा, सच कहता हूँ
0: बागी, बागी,
1: कसम
0: बागी,
1: मैं जो रूप उसे बनाऊंगा।

0: मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनकार।
1: फिलहाल हिट्स ऑफ 90s का सिलसिला जारी रखते हुए इस बार अमित कुमार की आवाज, वो भी सिलसिला है प्यार का में। लड़कियों से कुछ कहना चाहते हैं अमित कुमार
2: संगीत की झनकार पर हिट्स ऑफ 90s।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506।

0: Good afternoon and welcome back to Radio Brizvani. Namaskar, Ram Ram, Kim Chu, Sastikal, Assalamualaikum aur बुला कहते हुए एक बार फिर रोहित सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर। ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर। मैं हूँ रोहित सिंह। ठीक दो घंटा का कार्यक्रम लेकर हम आपके लिए अपने स्टूडियोज में लाइव उपस्थित हो चुके हैं। घड़ी के अनुसार ठीक 12:30 बज चुका है। 2:30 तक आपका हमारा साथ रहेगा मिले जुले संगीत का कार्यक्रम शाम का सफर में। आपने अपना रेडियो भी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। जुड़े रहिएगा हमारे साथ दो घंटे के लिए। हमेशा की तरह फोन नंबर 3279-1701 यानी 701 के रहस्य पे कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। रोहित का साथ है अभी से लेकर 2:30 तक, साथ जरूर दीजिएगा। देश विदेश में आप है, इंटरस्टेट में आप है या ब्रिस्बेन में आप है, नॉर्थ साइड में है, साउथ साइड में है, ईस्ट या वेस्ट, जहां पर भी आप है, जहां तक हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। याद कीजिएगा ये है ब्रिस्बेन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
1: रस्तारों का कभी काली घटाने,
0: खूबसूरत सा दिन है दोस्त साथियों, 19 degrees टेम्परेचर। शायद आप भोजन कर रहे हैं घर पर, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, साथ में हो जाएगा दो घंटा का रंग रंग कार्यक्रम में हमारा और आपका साथ रहेगा मिले जुले संगीत में शाम का सफर।

एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। अगर आपने अपना रेडियो भी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे। साथ दीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ ही 2:30 बजे तक मिले जुले संगीत में। और आज हमेशा की तरह कार्यक्रम आरंभ करते हैं स्थानीय कलाकार के साथ। और आज स्थानीय कलाकार थोड़ा सा अलग से है, सुनते रहिएगा और साथ दीजिएगा।

जो साथी याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ ये कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवाणी पर सुन रहे, चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथ दीजिएगा ठीक है, इसे लेकर 2:30 बजे तक।

और दूसरा तो याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, याद कीजिएगा रेडियो प्रिजवानी आप सभी सुन रहे हैं रोहित सिंह के साथ, और याद कीजिएगा कि वी प्रमोट ऑल रिलीजन्स एंड कल्चर्स, और खूबसूरत से गीत हम आपके लिए पेश करें रेडियो प्रिजवानी पर, और चलते हैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए आप सभी के लिए जरूर से हमें फोन कीजिएगा 3279-1701 पर, रोहित सिंह के साथ है ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक।

0: Sakita inapayamos.
1: I know you're gonna dig this.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644।

0: 5 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
4: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
3: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो।
4: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
5: दो साथ याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ ही कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर। और अब चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले हैं शिवांशुपति रवि प्रताप, आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत।

रोहित सिंह के साथ ही कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवाणी पर सुन रहे। चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खूबसूरत से गीत और इसमें भी याद करना चाहते हैं शिवांशुपति गंगा और गीता प्रसाद को आप दोनों के लिए।

याद कीजिए दोस्तों, साथ ही हमारा और आपका साथ रहेगा। ठीक है, अभी से लेकर 2:30 बजे तक। और इस गीत में याद करना चाहते एक बार फिर शिवाश्वती रविन और अमिता जगीर सर को, आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गीत।

और दोस्त साथी याद कीजिएगा, खूबसूरत शाम है और खूबसूरत गीत हम आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं अपने स्टूडियोज में। जरूर से हमारा साथ दीजिएगा। ठीक है, अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा रेडियो प्रिजवानी पर। और इस गीत में हम याद करना चाहते हैं श्रीमान श्रीमती गंगा और गीता प्रसाद को, आप दोनों के लिए।

रोहित सिंह के साथ है रेडियो बिजवानी पर। ठीक है, लेकर ढाई बजे तक स्टडी के अनुसार ठीक 5 मिनट रह गया है 2 बजने में।

एक बार फिर किशोर कुमार और शरण प्रभाकर की आवाज में पौधिक रूप से संगीत आप सभी के लिए रेडियो मेजबानी पर रोई सिंह के साथ है। ठीक है, अभी से लेकर 2:30 बजे तक और थोड़ी देर में कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। सु के साथ आप कार्यक्रम सुन सकेंगे ठीक 2:30 बजे से 5 बजे तक। उनका साथ दीजिएगा।

जो साथी इसी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। रेडियो बंद मत कीजिएगा, थोड़ी देर में आप सुख के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे। उनके साथ दीजिएगा ठीक 5 बजे तक। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव द बेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वीक नेक्स्ट वीक। एक बार फिर जाने से पहले आप सभी को हम कहते हैं नमस्कार, नमस्ते, शब खैर और विनाका।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506।

गुड आफ्टरनून, आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सस्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो बुस्वानी 1701। हमारे स्टूडियोज में ठीक 2:30 बज चुके हैं। दोस्तों, अभी आपके साथ यह रोहित सिंह ने चलते हैं अब आपके साथ हमारा आपका साथ ठीक 5 बजे तक, और आज आपके साथ सो जरूर। जो लोग आज पहली बार हमें सुन रहे हैं, वेलकम ऑन रेडियो बुस्वानी शो। रेडियो बुस्वानी 24/7 आप सुन सकते हैं, जिसे आप सुनते हैं हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से। के साथ साथ अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, कुछ भी खुशियां आपके पास है, तो आपको बहुत सारी सी बधाइयां हमारी तरफ से। आप हमारे साथ कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं तो याद रहे हमारा लैंडलाइन 3279-1701, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर

सूरज का क्या काम है दोस्तों? सूरज का काम है चमकना। फूलों का काम है महकना। और हमारा क्या काम है? आप सभी को वीकेंड पर याद करना। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहे दोस्तों, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत उपहार है। और जीवन में मुस्कुराने की बहुत सारी सी वजह है। हैप्पी डे, हैप्पी वीकेंड।

मार्च का पहला गीत अब तेरे प्यार का सलाम हो सनम पर्दे पर श्री देवी लता जी की आवाज में फिल्म गुमराह से लिया हुआ गीत आपने सुना। चलते हैं आगे बढ़ते हुए आज का अगला गीत सुनते हैं। जी हाँ, अगर आज आपकी अपनी कोई फरमाइश हो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे से रिक्वेस्ट ऑलरेडी हमेशा लाइंड अप रहते हैं, लेकिन सुनते हैं कुछ मेरी चॉइसेस भी।

बात पे रह गई थी 1995 से फिल्म का लिया हुआ गीत, फिल्म का नाम हम सब चोर है, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में आपने सुना। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज के घड़ी में 2:45 बज चुके हैं। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का रेडियो विश्वानी AM पर, आपके साथ है सो एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट।

के लिए खास फरमाइश हमारे पास आई थी वहाँ सैक्रामेंटो यूएसए से, और जहाँ से पहली बार आज हमारे साथ जुड़े हैं योगेश और नीतू जो हमें सुन रहे हैं वहाँ कामनी अभिजैन के घर पर सैक्रामेंटो यूएसए में। एक बार फिर आप दोनों का स्वागत है रेडियो विस्वानी आईएम पर। चलते हैं अगली फरमाइश हमारे पास है शिकागो से अमला सिंह की ओर से। आप सुनना चाहते हैं शोना?

0: पर फरमाइश करने वाली थी अमला सिंह जो हमें सुन रही है शिकागो में।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित।
2: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ, वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge. Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
4: Acha? Wo kya?
3: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus Foreign Exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
4: Lekin mama ke liye money lene kahin dur jana possible nahi hoga.
3: Are, receivers ab cash pickup, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: चलते हैं समय की ओर। देखा जाए दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं हमारे स्टूडियोज में 3:00। यह है शाम का सफर रेडियो विश्वानी AM और हम चलते हैं केड्रोन पार्क की ओर। फरमाइश है हमारे पास केड्रोन पार्क से जोनी और सविता की ओर से आप दोनों के लिए लेटेस्ट रिमेक्स।

0: करो।
1: और इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे जोनी और सविता फ्रॉम केरोन पार्क। आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी। दोस्तों 9 मिनट हो गए हैं हमारे स्टूडियोज में 3 बजकर। हम चलते हैं अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। जगजीत सिंह की आवाज की गजलें हमारे पास, और गजल की किसने फरमाइश किया है? जी हाँ, हमेशा की तरह ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो USA।

0: और जगजीत सिंह की आवाज की गजल को आज फरमाइश किया था ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।
1: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। चलते हैं दोस्तों, हमारे पास एक थोड़ा सा इमोशनल अनाउंसमेंट आई है। और किसकी अनाउंसमेंट है? जी हाँ, बहुत से लोग आज दुखी भी है, बहुत से लोग आज सुखी भी है, लेकिन आज एक इमोशनल दुखी वाला हमारे पास अनाउंसमेंट आई है, जहाँ पर कुछ लोग आज अपनी माँ की साल की यानी कि सलीना आज सेलिब्रेशन पूजा कर रहे हैं। और वो कौन है? जी हाँ, बहुत से बहनें जो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, सिडनी से आशा के घर पर आज अपनी माँ का मैडम नारायण उनके नाम से जाना जाता था। और मुझे बताया गया है कि रेडियो फिजी 2 में उन्होंने कुछ गीत भी गाए थे उनके पापा के साथ। दोनों का गीत का मुझे दिया गया है कौन सा गीत वो सुनना चाहते हैं उनकी मामा पापा के यादों में। लेकिन उससे पहले जो सलीना में उनके आशा के घर पर है, उनकी बहन है वहाँ सुषमा, उनके परिवार शामिल है वहाँ सिडनी से उनकी सलीना पर, और साथ साथ में बहुत सारे से प्यार और आशीर्वाद के साथ याद कर रहे हैं अपनी माँ को आज, जो आज उनके साथ नहीं है। उनकी बेटी है प्रवीणा फ्रॉम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, और बेटी कामनी फ्रॉम सेक्रामेंटो यूएसए से याद करें अपनी माँ को आज उनकी सलीना पर। और हम यही कहना चाहते हैं कि हजारों तरह के फूल होते हैं बगीचे में दोस्तों, अगर उनमें से एक गुलाब ना हो तो बगिया सूना सूना लगता है। उसी प्रकार अगर परिवार में सब हो मगर माँ ना हो तो त्यौहार भी बड़ा सूना सूना लगता है। माँ के जाने के बाद माँ असुकून दोनों ढूंढती हैं, पर माँ नहीं मिलती और न सुकून मिलता, क्योंकि माँ से ही हमेशा सुकून मिलता है। तो पहले आज एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद उनकी फरमाइश पर उनकी माँ ने जो रेडियो फिजी 2 पर कभी एक गीत गाया था उनके माँ पापा ने, उनकी रिक्वेस्ट पर सुनेंगे। लेकिन पहले एक अलग सा गीत है।

ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आज अपनी माँ को याद करी है पूरे साल पर। आज उनकी माँ का सलीना है जिनमें है वहाँ सिडनी में आशा के घर पर उनकी आज उनकी वर्सी कहते हैं। इस साल की सलीना की पूजा हो रही है, मेरे ख्याल से हो गई है। साथ साथ में उनकी बेटी वहाँ पर है सुषमा, उनके परिवार साथ में अपनी माँ का वर्सी सेलिब्रेट कर रहे हैं। याद किया है अपनी माँ को ऑल द वे ऑकलैंड न्यूजीलैंड से प्रवीणा जो हमें सुन रही है, और साथ साथ में कामनी फ्रॉम सेक्रामेंटो यूएसए। और आप लोगों को जो अगली फरमाइश है, आपने कहा कि उनके मम्मी और पापा जो थे 60s में FBC रेडियो फिजी 2 पर जो गीत उन्होंने गाया था, तो चलते हैं उनकी आवाज उनकी गीत जो गीत उन्होंने गाया था वो गीत आप सुनना चाहते हैं। सुनते हैं कौन सा गीत है।

बहुत प्यारा संगीत है दोस्तों, और हमारे पास मैसेज आया है कि अगर आप इन परिवार को नहीं जानते हैं तो इन जो लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स जो थे, जो फिजी में आपको पता है शिव साउंड सिस्टम, उनके फादर का था शिव नारायण और शिव साउंड सिस्टम के सुबह फिजी में जो थे, और उनकी मम का नाम था मैडम नारायण। तो आज सभी बेटियां ने आज अपनी माँ के याद में सेलिना आज सेलिब्रेट किया वर्षी, और उनकी यादों में एक गीत सुनना चाहा। चलते हैं विशाद की ओर दोस्तों, फरमाइश है हमारे पास विशाद से, फिरोज और खतीजा की ओर से। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक।

मोहम्मद रफीकी अवस का ब्यूटीफुल सॉन्ग पर्दे पर राजी बाबर के लिए। प्रेम खनम आप तो ऐसे न थे जिसे फरमाइश करने वाले थे। रोज इन खतीजा फ्रॉम विशाल। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्मानी 79.1 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से आपके साथ शामिल हो गए हमारे साथ। अगली फरमाइश है हमारे पास ग्रीन एकर सिडनी से रजेना मालती प्रसाद की ओर से।

0: दोस्तों, इस गीत को फरमाइश करने वाले थे रजन और मालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीन एका सिडनी।
1: Time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
3: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
0: और जबकि समय की ओर देखा जाए दोस्तों, पौने चार बज चुके हैं हमारे स्टूडियोस में, तो चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। हम बढ़ते हैं और अगली फरमाइश आई है हमारे पास आचाफील से फरीदा आसमा और शहरुल की ओर से। का नाम है नतीजा, मोहम्मद रफी की आवाज।

वाह क्या गाना है, ब्यूटीफुल सॉन्ग जी। फिल्म नतीजा से लिया गीत, 1969 की फिल्म नतीजा से लिया गीत की फरमाइश आई थी हमारे पास वहाँ आज फिर से, जहाँ मैं सुने फरीदा शहरुल और आसमा। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। शामिल हो गए हमारे साथ अगली फरमाइश लेकर। फरमाइश किसने किया है जी, गंगा और गीता फ्रॉम रेड बैंक्स।

0: तो फरमाइश करने वाले थे इस गीत को गंगा और गीता फ्रॉम रेड बैंक।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: Fire ants tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
4: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਹਾਂ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: और हम चलते हैं कैलिफोर्निया यूएसए की ओर। फरमाइश आई हमारे पास कैलिफोर्निया से मैक्स प्रसाद की ओर से। मैक्स, आपके लिए चलते अगला गीत सुनते हैं।

तो जरूर दोस्तों, हमारे पास परमाशय थी मैक्स प्रसाद जो हमें सुन रही कैलिफोर्निया यूएसए में। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान।

साथ ही हमारे पास अगला गीत के लिए फरमाइश है। जी हाँ, फरमाइश करने वाले हैं सनी और अमीजा फ्रॉम सिडनी। तो आप दोनों के लिए मुन्नी बदनाम हुए।

इतनी बदनाम की फरमाइश आई थी हमारे पास वहाँ बैंक्सटाउन सिडनी से सनी और रमीजा की ओर हम और से और चलते हैं हम मैनली वेस्ट विनम की ओर. लक्ष्मी हमें सुन रही है, हाय लक्ष्मी. चलते हैं आपके लिए अगला गीत पेश है.

0: दोस्तों हमारे साथ शामिल हो गई थी लक्ष्मी इस गीत में जो हमें सुन रहे हैं मेली वेस्ट में।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है, इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा, वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
6: Digicel, better together.
7: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
0: चलते हैं दोस्तों फोरेस्ट लेक की ओर। आप फोरेस्ट लेक से फरमाइश है हमारे पास हफीज अली खान और जबीदा खान की ओर से। आप दोनों के लिए बहुत प्यारा सा एक भजन कव्वाली गीत है।

0: First off, it actually gets.
1: तो बहुत प्यारा सा कवाली गीत इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे हाफिज भाई वहाँ फॉरेस्ट लेक से, हाफिज अली खान और जबीदा खान. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701.

आज जरूर हमारे साथ शामिल हो गई थी अनिता सिंह इस गीत में और साथ साथ में ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। और दोस्तों हम आपको याद दिला दें कि आज हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 5 बजे तक। अब 5 बजे के साथ आपके साथ हो जाएगी शशि चौकन, साथ उनका जरूर दीजिएगा।

0: Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
2: ਯਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕਾ ਕਿਆ ਹੁਆ?
3: ਯਾਰ, ਆਮ ਸੋ ਵਰੀਡ। Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Meri advice hai, go for the best. Atul Bhardwaj ji hai na, unke paas 12 saal se zyada ka vast experience hai aur law ki entry cases ko handle karne mein unki expertise hai. Criminal law, domestic offense, traffic drug offense mein 12 saal se zyada ka rich experience. Aur to aur conveyance, family law, immigration laws mein bhi Bhardwaj and Associates ke lawyers ka vast experience hai. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: और दोस्तों, बस हमारे स्टूडियोज में 5:45 बज चुके हैं। अब हम किसी का कॉल्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन आज के हमारी आखिरी फरमाइश है एक बार फिर सैक्रामेंटो यूएसए से, जहां मैं सुन विजयन आप कामनी। तो चलते हैं आप दोनों की फरमाइश से आज का आखिरी फरमाइश गीत।
5: विद्यार्थियों, मैं आरती, मेरे साथी प्रियंका, सारिका और गीता के साथ हमारे यूट्यूब चैनल सुरमई स्पंदन में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, जिसके तहत पाठ्यक्रम में कुछ बहुत अच्छे बदलाव किए गए हैं। संगीत विषय में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए राग आधारित फिल्मी गीतों का भी सिलेबस में समावेश किया गया है, तो हमारा ये वीडियो इसी पर केंद्रित है। सबसे पहले हमने सिलेबस के अत्यंत मधुर एवं लोकप्रिय राग यमन को चुना है। तीव्र मध्यम यमन की विशेष पहचान है और इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना गया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अनेक संगीतकारों ने राग यमन का आधार लेकर अनेक सुप्रसिद्ध गीतों को स्वरबद्ध किया है, तो हमारे इस वीडियो में प्रस्तुत है।
6: और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना।

जगह इस गीत को हम पूरा नहीं बजा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब बहुत समय नहीं है. शायद नेक्स्ट वीक हम फिर से इस गीत को आपके लिए पूरी कर सकेंगे. इसी के साथ साथ दोस्तों, बस हमारे स्टूडियोज में 5 मिनट लगे हैं 5 बजने में. ब्रिस्बेन टाइम है, हमारे बात आपके साथ हो जाएगी 5 बजे से. शशि चौखन, साथ उनका जरूर दीजिएगा. साथ देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद. आई गॉट अ बिग फीडबैक हियर अगेन टुडे एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर फीडबैक. थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल. हमारी आपकी मुलाकात है नेक्स्ट सैटरडे को 1 PM से शनिवार मस्ती म्यूजिक पर. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. हैव अ नाइस वीक, हैव अ नाइस वीकेंड. नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय. जी हाँ, भूलना मत, सुनना मत भूलेगा. 5 o'clock से आपके साथ हो जाएगी शशि जोखन.

जी कहते हैं ना कि जिसकी सोच में आत्मसम्मान की महक है, जिसकी सोच में आत्मसम्मान की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ एक गुलाब है। तो आज से हम गुलाब की तरह खुशबूदार बने, ठीक है? तो करती हूँ आपका स्वागत, कहती हूँ नमस्कार, कैम छो, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम, एक रंगीन शाम आपके नाम। मैं शशि जोखन आपका साथ दे रही हूँ और इसी तरह आप भी बस हमारा साथ देते ही रहे। कार्यक्रम को आगे हम लेकर चलते हैं

हरी वेलकम टू एक रंगीन शाम आपके नाम, ये शाम बेशक आप ही के नाम। हाँ जी, इस साल के जो सातवें महीने हैं, बस वो भी देखते ही देखते खत्म होने को है ना। बिल्कुल, बस आज आखिरी रविवार है हमारे लिए आपके साथ, और फिर उसके बाद हम अगस्त महीने में दाखिल हो जाएंगे, है ना। मगर देखिए, अभी बहुत कुछ, अब बिजी टाइम आने वाले हैं ना। ये जो चंद महीने हैं हमारे पास, ये बहुत ही फास्ट निकलने को है। देखिए, अगस्त महीने में रक्षाबंधन, भाई बहन का अटूट बंधन का जो त्योहार होता है, वो 26 अगस्त को आप अपने कैलेंडर में ये डेट बेशक नोट कीजिए। और फिर उसके बाद आएगी कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है, अष्टमी, ये सितंबर 4 तारीख से शुरू होने को है। और फिर उसके बाद भारत का स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी भी मिली थी, टेक नोट ऑफ दैट। और इसके साथ साथ गुरु नानक जी का जन्मदिन November 24 को, और इसी बीच, हाँ जी, इसी बीच नवरात्रि और दिवाली। सो इन सभी डेट्स को आप जरूर नोट कीजिए। तो अपने सभी गुजराती भाई बहनों को शामिल करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में खास तौर से।

हाँ जी, बहुत ही सुहाना मंजर, मौसम भी बहुत ही खुशनुमा है ऑफ कोर्स, और बहुत सारे देशों से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिंगापुर से भी जुड़ चुके हैं. सो वेलकम वेलकम टू एक रंगीन शाम. आपके नाम शीनल एंड मनीष, थैंक यू. सो चलो सुनते हैं कार्यक्रम को और आगे हम बढ़ाते हैं, मगर याद रखिए मौसम, जैसे हमने कहा कि मौसम बहुत ही खुशनुमा है ब्रिस्बेन में, एंड ऑफ कोर्स 19 अभी 19 डिग्रीज है 19, और लगभग मध्य रात्रि तक 12 डिग्रीज हो जाएगा, मगर बहुत ही सुहाना मंजर है ऑफ कोर्स, एंड होपफुली यू विल बी एबल टू एंजॉय आज का जो ये प्रोग्राम है, एंड साथ जरूर देती ही रहिए. सो जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर अगर अभी भी आप जुड़े हो तो तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपका. एक रंगीन शाम आपके नाम, मैं शशि जोखन, रेडियो ब्रिस्बेन 79.1 पर 5 से 7 बजे तक हर रविवार को.

बहुत ही बढ़िया सा नगमा ये फिल्म सिकंदर से हमने ली आपके लिए। और कहते हैं ना कि रोने से किसी को पाया नहीं जाता, रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। सो याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सो याद रखिए।

0: हाँ जी, अगर आप ऑफ कोर्स आप हिंदी फिल्म देखना पसंद करते हो, हिंदी बातें भी थोड़े मोड़े कर लेते हो जो जिनको नहीं आती है, और अगर कोई किसी को हिंदी नहीं आती है तो आपके लिए मैं एक शब्द लेकर आई हूँ आज, और शब्द है टाइम, ठीक है, TIME. सो इसका जो हिंदी शब्द है ये आप ढूंढ कर रखिए, और बाद में मैं खत्म होने से पहले प्रोग्राम में आपको बताऊंगी कि इनकी हिंदी शब्द क्या है, और ऑफ कोर्स किस तरह से आप उसे सेंटेंस में रख सकते हो, ठीक है? तो डू दैट. और देखिए, हमारे प्रोग्राम में सभी उम्र के लोग जुड़ जाते हैं, तो मैं बारी बारी से नए पुराने गीत लेकर आई हूँ, और बीच में मिड ईयर्स जो थे ना, 70s 80s 90s, उस समय के भी गीत कुछ लेकर आई हूँ. मगर आई होप यू आर एंजॉयिंग, एंड जस्ट टेक टाइम आउट एंड चिल. आप बैठ जाइए, जो भी आप कर रहे हो, शायद भोजन बना रहे हो, या फिर सब तैयार है और आप आराम फरमा रहे होंगे, हमारा साथ दे रहे हैं. सो इसी तरह देते ही रहिए, 7 बजे तक मैं आपका साथ दूंगी, ठीक है?
1: कमी नहीं होगी. वेलकम टू देसी सनडाउनर विद रंग और पार.

हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि आज पारिवारिक विषय में क्या लेकर आई हूँ मैं। तो आज भी एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। और देखिए, 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ठीक है, हर साल। तो उसका उद्देश्य लीवर से जुड़ी होती है हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने सोचा कि चलो, आज तो 26th है मगर 2 दिन में 28th हो जाएगी, सो ऑफ कोर्स इसके बारे में मैं आपको आज ही बता दूंगी, ठीक है। तो ये मैं 6 बजे के बाद आपके लिए लेकर आऊंगी। एंड ऑफ कोर्स मैं नहीं भूली हूँ छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एंड मज़ेदार भी होते हैं और शिक्षक भी होती है, सो उसे भी आप ज़रूर सुनिए। बारी बारी से मैं पेश करूंगी, मैं आपको टाइम नहीं बता रही हूँ, आप हमारा साथ बस जुड़े रहिए 2 घंटों तक। और अगर आज आप पहली बार हमारे कार्यक्रम सुन रहे हो तो मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, कनेक्टिंग विद रेडियो ब्रिजवानी 1701।

जी, मैं तो भूल ही गई थी आपको बताने के लिए कि यहाँ न्यूजीलैंड में एक्चुअली इलेक्शन होने को है, जनरल इलेक्शन. सो ये होगी, एक्चुअली इट्स प्लान टू बी हेल्ड ऑन 7 नवंबर, ठीक है, इस वर्ष. जोरों तौर से एक्चुअली सब कैंपेनिंग शुरू होने वाली है. एंड लोग अपने अपने अपने लिए जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी थोड़े थोड़े चिंतित हैं होंगे ना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आगे क्या होने को है, वेदर दे विल मेक इट और नॉट. मगर फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ भी हैं न्यूजीलैंड में, अगर लोग सुन रहे हैं तो मत भूलिए, इलेक्शन में एक्चुअली वोट करना बहुत ही जरूरी होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर बाद में कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता है ना. सो इट्स गुड टू टेक पार्ट इन इलेक्शन. ये अगर आपको, आप एलिजिबल है वोट करने के लिए, तो जरूर आपको वोट करनी चाहिए. ठीक है, तो चलते हैं और आगे.

हाँ जी, किसी ने सच कहा है कि जिंदगी को एंजॉय करो और खुश रहो। तो हम कुछ ही देर में जानेंगे छोटी छोटी बातें अपने की सेगमेंट में कि क्या वो मीन कर रहे हैं। ठीक है, सो चलो एक और गीत सुनते हैं। सो देखिए, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और मैं शशि जोखन आपका साथ दूंगी पूरे 7 बजे तक। एंड 1701 पर आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी। यस।

0: La la la la la
1: La
0: la.
2: जिंदगी को एंजॉय करो, खुद को दुख देकर कुछ नहीं मिलता। लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, इससे हंसकर जीना सीखो। रोना तो अपने आप आ जाता है, हाँ जब सच्चा प्यार टूट जाता है तो दर्द बहुत होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। कभी कभी जो नहीं मिलता शायद वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं होता, शायद ऊपर वाला कुछ और बेहतर सोच रहा होता है। इसलिए खुद को मत तोड़, अपनी वैल्यू समझो और आगे बढ़ते रहो। और सच ये है, जिंदगी रुकती नहीं, बस हमें फिर से जीना सीखना पड़ता है।
3: हाँ जी, सुना आपने ना, तो ये थे किस तरह से खुद को हैप्पी रखना है एंड कैसे कैसे जीवन में आगे सबको बढ़ना है। एंड जो आपको ठीक लगे वो आप करिए, मगर खुश रहिए, ठीक है? सो एक और नगमा।

हाँ जी, क्या आपको पता है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की घोषणा ग्लासगो में हुई है, और कॉमनवेल्थ जो स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की बैठक के दौरान ये हुआ है, और 2030 गेम्स की मेजबानी करने के लिए गुजरात भारत की शहर अहमदाबाद को चुना गया है। और इंग्लिश विंग्लिश का अगला गीत है, इसी फिल्म से हमने ली है। और हाँ, इंग्लिश विंग्लिश की बात हो रही है तो आज का जो शब्द है, हाँ, क्या शब्द है, द वर्ड इज टाइम, TIME, ठीक है? तो आप इसकी हिंदी शब्द को ढूंढिए, इन द मीन टाइम इस गीत को सुनिए। श्री देवी बहुत ही बरसों बाद इस फिल्म में आई थी, और फिर उसके बाद उन्होंने कोई भी मूवी नहीं की, और अब तो वो हमारे साथ है ही नहीं ना।

हाँ जी, श्रीदेवी ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की थी इस फिल्म में. वैसे तो वो इतनी पहुंची हुई एक्ट्रेस है, उनके बारे में तो ऐसे कहना भी नहीं चाहिए, मगर फिर भी ये उनकी आखिरी फिल्म थी. एंड इट वाज वेरी वेरी सैड टू सी कि वो आज इस दुनिया में नहीं है. मगर देखिए, यही जीवन की रीत है ना, दुनिया की रीत है और हमारे जीवन की भी रीत है. हम आए हैं तो जाएंगे जरूर, कब जाएंगे इसका पता तो किसी को नहीं है. चलो, बट कब आने वाले हैं वो तो हमें पता ही चल जाता है ना, जब पैदा होते हैं, मगर जाने के समय किसी को नहीं पता चलता. एनीवे, 18 जुलाई 2026 को भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए अपना पहला निजी रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है. सो ऐसे कई सारे न्यूज़ है हमारे पास बताने के लिए, मगर बारी बारी से इसे आप तक पहुंचाएंगे. और देखिए, आप रेडियो ब्रिजवानी की 1701 चैनल पर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और 6 बस बजने ही वाले हैं. चलो एक और गीत सुनते हैं, फिर उसके बाद में कुछ और बातें, ठीक है? इस बार हमने फिल्म फना से आपके लिए इस गीत को चुनकर लाई हूं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड सॉन्ग्स. अभी सदाबहार गाने यानी कि बॉलीवुड की पुराने गीतों की दुनिया में हम चलेंगे कुछ ही देर में.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी।
1: जी तो चलो अब चलते हैं, इस गीत को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं पुराने गीतों की दुनिया में, सदाबहार गाने।

हाँ जी, शाम तो है ही मस्तानी, बहुत ही खुशनुमा सा मौसम है। और चलते हैं दूसरी ओर, अब आपको लेकर चलते हैं 1955 की फिल्म आजाद से ली गई है लगभग। मौसम की बात कर रहे हैं तो बढ़िया गीत।

बस अब थोड़ी ही देर में हम लेकर आएंगे आपके लिए पारिवारिक विषय हेपेटाइटिस के बारे में। तो ये तो आपको पता ही है ना, तो इसे हम कुछ ही देर में पेश करेंगे। अभी तो आप सुनिए ये नगमा। फिल्म तीन देवियां से ली गई, किशोरदा और इन कॉरस की आवाजों में।

जी अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:15 होने को है ऑलमोस्ट, और अब हम आपको लेकर चलते हैं पारिवारिक विषय की ओर। और आज जैसे हमने कहा, हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, उनकी सिम्टम्स क्या है, और हेपेटाइटिस का रिस्क क्या क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है, इन पर हम कुछ झलक डालेंगे। तो देखिए, दुनिया भर में हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य लीवर से जुड़े हेपेटाइटिस इन्फेक्शन में जागरूकता फैलाना होता है। तो वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बरूश सैमुअल ब्लमबर्ग, हाँ, उनके जन्मदिन के मौके पर इस दिन जुलाई 28 के दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पर इसे मनाया जाता है। और ये जो इनकी खोज और इलाज के लिए उन्होंने डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन का विकास करने वाले ये पहला शख्स था। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से वर्ल्ड वाइड हेपेटाइटिस फ्री मिशन के साथ इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी, और साल 2008 में पहली बार वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट भी किया गया था। तो WHO की ओर से हर साल हेपेटाइटिस डे के लिए अलग अलग थीम रखी जाती है, और इस बार 2026 की जो थीम है वो है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट। ठीक है, हेपेटाइटिस, आइए इसे तोड़ें और बैरियर्स को खत्म करें, यही इस वर्ष की थीम है। और इस थीम का जो मुख्य उद्देश्य हेपेटाइटिस से जुड़ी सामाजिक स्टिग्मा जो होती है ना, गलत फहमियों को और जांच उपचार में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। तो हेपेटाइटिस की इस बीमारी को साल 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है, और अब देखना है कि ये पूरा हो सके या नहीं, मगर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जरूर पूर्ण होगी। तो पहले पहल तो हेपेटाइटिस का किन्हें रिस्क अधिक है, ठीक है, हम इससे शुरू करेंगे। पहला तो ये है, जो बहुत ज्यादा शराब पीने वाले मरीजों को इसका रिस्क सबसे अधिक होती है। दूसरी होती है जो ड्रग्स का सेवन करता हो, बहुत ज्यादा ड्रग्स का सेवन करता हो, उनको भी इसका रिस्क होता है। और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जैसे किडनी डिजीज, कोई अन्य लीवर डिजीज और कोई इम्यूनिटी डिजीज से भी इसके जांच जो इसकी जो चांसेस है आपको हेपेटाइटिस होने का, इसका रिस्क बढ़ जाता है। तो हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि बीमारी खून, पसीने और थूक से किसी दूसरे को भी अफेक्ट कर सकता है। और इसके जो सिम्टम्स, आप सोच रहे होंगे सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स खास तौर से पहला तो थकान और कमजोरी महसूस करना, दूसरी है उल्टी आना, उल्टी वगैरह, और फिर त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, और पेट में दर्द, गहरे पीले रंग का पेशाब आना, भूख ना लगना, जोड़ों का दर्द, बुखार आना ज़्यादा, वजन कम होना और आंखों का पीला होना, ये सभी सिम्टम्स होते हैं। और फिर हेपेटाइटिस से बचाव के चंद उपाय मैं आपको बताती हूँ, वो है कि साफ और उबला हुआ पानी आप पिए, और बाहर का खाना कम से कम खाएं, और दूषित पानी को पीने या नहाने से आप बचिए। और अगर आप अगर किसी ऐसे देश जा रहे हैं जहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए ताकि आपको वैक्सीनेशन या दवा दी जाए, ताकि आप सेफ रह सकें, क्योंकि बहुत खतरनाक है ये, जानलेवा भी है। सो इसीलिए WHO इस पर ज़्यादा झलक डाल रही है, और इसी तरह से लोगों तक इनकी जागरूकता जो है वो फैलाना चाहते हैं। तो देखिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर आपको, मैं तो सिर्फ आपको बताती हूँ, अवेयरनेस ला रही हूँ आपके लिए, मगर ये आपके ऊपर है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपको शायद कोई ऐसी कोई बीमारी हो सकती है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह-मशवरा करिए, उनसे डिस्कस कीजिए। तो ये थे आज चंद बातें हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के बारे में। तो
इनमें से जो भी मोतियाँ आप चुनना चाहे आप चुन सकते हैं अगर आपको ठीक लगे, और अगर आपको ना ठीक लगे तो बेशक आप इसे बेअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए थी ही नहीं। ठीक है, चलते हैं, आपको एक बार फिर शामिल करते हैं इस गीत में। और अगर अभी अभी आप जुड़े हुए हमारे साथ तो वेलकम टू रेडियो ब्रिजानी 1701 का अपना ही कार्यक्रम एक रंगीन शाम आपके नाम।

0: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
1: जी आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम। बस इसी तरह आप हमारा साथ देते ही रहिए एंड हम इसी तरह आपका साथ देते ही रहेंगे। और अब तो बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, आप जानते ही हैं। थोड़ी ही देर में अब हम यहाँ से रुखसत ले लेंगे और साथ देगी सताक्षी आप
2: सुबह से शाम तक।
3: When I will dance, my dance shall speak for me.
2: शाम से रात्रि तक
3: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग।
4: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा। लगा कैसा?
2: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान।
3: हिल मत चल।
4: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा? या
3: या
4: ओके सॉफ्ट
3: सॉफ्ट
4: या
3: अब लाउड या।
1: हाँ जी, जस्ट चिल हमारे साथ एंड 7 बजे के बाद सताक्षी आएगी, ठीक है।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: हाँ जी, याद रखिए, आप भी इसी तरह एडवर्टाइज करा सकते हैं। कहाँ पर? रेडियो ब्रिजानी पर, ठीक है? तो आप एंजेला पूरन को फोन कीजिए।
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रिज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रिज सोलर पावर का प्रॉमिस है Quality products, professional installation और real savings. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ sunshine मिलेगा। Ray Solar Power, powering homes, powering businesses, powering the future. आज ही कॉल करें 0430-525-896. That is 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
4: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: जी, खाने की तैयारी हो रही है क्या या हो गया? अगर हो गया है फिर कल की तैयारी हो रही होगी ना। मगर देखिए, वीकेंड अपनी जगह पर एक अलग सा माहौल लेकर आती है, और फिर जब हम वापस काम पर, नौकरी पर जाते हैं, वहाँ भी माहौल कुछ और ही रहता है, दिमागी काम होती है, तो उसके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव थॉट से आपको जाना चाहिए एंड हैप्पी हैप्पी जाना चाहिए। जितना हैप्पी आप रहेंगे उतना ही आपका दिन मजेदार होगा।
1: Sending a digital top up to loved ones in Fiji is super easy. केवल अपने nearest dairy, supermarket और petrol station पहुंचिए और खरीदिए 10, 20, 30 या $50 top up. आप website www.digicelinternational.com visit भी कर सकते हैं digicel top up अपने family को Fiji देने के लिए। पैसा भेजने के लिए our partner Click Express Pick is the easiest way to send money to digicel Fiji. केवल आपको रजिस्टर होना है एट www.clickexpresspic.com पर। डिजिसेल, वी आर बेटर टुगेदर।
0: हाँ जी, ऑफ कोर्स, और आप रेडियो भिजवानी के साथ हो तो और भी बढ़िया हो जाएगा ना, ये तो आप मानते ही हैं। सो एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर प्रोग्राम का अंत होने ही वाला है, और हम आपको बताएंगे जो टाइम वर्ड हमने इंग्लिश वर्ड दिए थे उसकी जो हिंदी शब्द है वो क्या है।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हाँ जी, अब यहाँ से हम चलते हैं आपको लेकर, जो इंग्लिश वर्ड हमने आपको बताई थी, द वर्ड वाज टाइम, TIME. तो मुझे पता है आप ढूंढ ही लिए होंगे, उनकी जो हिंदी शब्द है वो है समय. ठीक है, समय या वक्त भी आप बोल सकते हो. एंड सेंटेंस फॉर्म में अगर आप चाहे तो सेंटेंस फॉर्म में आप कह सकते हो कि समय क्या हुआ है, ना, ये एक सवाल है, व्हाट टाइम इज इट. ठीक है, समय क्या हुआ है. और फिर दूसरी ओर, मुझे समय पर पहुंचना है, मुझे समय पर पहुंचना है, यानी कि आई नीड टू अराइव ऑन टाइम. हाँ, और दवा लेने का वक्त हो गया है, दवा लेने का वक्त हो गया, यानी इट इज टाइम टू टेक द मेडिसन. ओके, और मेरे पास बहुत कम समय है, वो तो है ही मेरे पास, और बस 7 मिनट ही बचे हैं मेरे पास. तो उसे इंग्लिश में जैसे वी हैव और आई हैव अ वेरी लिटिल टाइम, और यू हैव, वी हैव वेरी लिटिल टाइम. ठीक है, तो ये थे चंद चंद तरह से, डिफरेंट डिफरेंट वेज से आप इसे, इस वर्ड को सेंटेंस फॉर्म में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द होते हैं, मगर चलो अब हम मुझे लगता है कि एक और गीत मैं बजाती हूँ, फिर उसके बाद में हम आखिरी गीत के साथ आपको छोड़ेंगे, और आएगी आपके लिए सताक्षी फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस से. इस गीत को हमने चुना है आपके लिए, सेकंड लास्ट सॉन्ग. आज 26 जुलाई, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, 1701 रेडियो ब्रिजवानी पर.

हाँ जी, अब तो बारी आ गई है आखिरी गीत की। कुछ अपना अंदाज है, कुछ मौसम रंगीन है। कुछ अपना अंदाज है, कुछ मौसम रंगीन है। तारीफ करूं या चुप रहूं, दोनों ही रंगीन है। ठीक है ना, छोड़ दो सब गम और शिकवे, छोड़ दो सब गम और शिकवे, बदलने पर तो मौसम भी सुहाना लगता है। सो साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब शायद मैं आपसे शुक्रवार की सुबह आपको काम पर छोड़ूंगी, ठीक है, 7 बजे से 9 बजे तक। अगर जतीश जी आ जाए तो शायद वो करेंगे, वो आ जाएंगे प्रोग्राम पर, वरना मैं आपका साथ दूंगी। और इसके साथ साथ फिर अगले अगले रविवार को, ठीक है, और हम पहुंच जाएंगे अगस्त महीने में। तो अपना ख्याल रखिए, औरों का भी ख्याल रखिए, खुश रहिए, औरों को भी खुश रहने का मौका जरूर दीजिए। और आ जाएगी कुछ ही मिनटों में सताक्षी।

हे ब्रिस्बेन, इनफैक्ट उन सभी लोगों को मेरा हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गुड डे जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। जी हाँ, इस वक्त आप सुन रहे हैं ब्रिस्बेन से आपका अपना पसंदीदा शो जहाँ बजते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद के गाने। जी हाँ, वेलकम बैक। एक बार फिर से आज संडे आ गया है और आ गई है आपके साथ आपकी फरमाइशों को लेकर सताक्षी फरमाइशी गीत। भाई संडे का दिन जब मौसम तो सुहाना है ही, हमारा मूड भी सुहाना है, तो इस सुहाने से मौसम को और भी मजेदार बनाते हैं चलिए आपकी फरमाइशों के साथ। तो भाई अगर अभी तक आपने हमें अपनी फरमाइश नहीं भेजी है, मुझ तक पहुंची नहीं है, तो बस जल्दी से मेरे पीसी पर मुझे दिखा दीजिए आपका मेल। जी हाँ, लिख भेजिए हमें वो गाने जो आज आप सुनना चाहते हैं हमारे रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पर। चलिए शुरुआत करते हैं फरमाइशी गीतों की बिना देर किए और आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। Keep listening to रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

सो सो सो सो सो फरमाइशी गीत सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। और कौन से है वो लकी लिसनर जो जुड़ गए हैं इस वक्त अपने मेल के थ्रू हमारे साथ, और आप हैं अमित। अमित ने हमें लिखा है ब्रिस्बेन से, और अमित कहते हैं कि सताक्षी 90s के गाने ब्लॉकबस्टर हुआ करते थे, और एक ऐसा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उस वक्त मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और ये फिल्म जो है ये हमने अपनी फैमिली से छुपकर देखी थी। और सच बताऊं उस जमाने में फिल्में देखना बच्चों का अलाउड नहीं था, तो हम दोनों ही पहली बार थिएटर गए थे इस फिल्म को देखने के लिए। भाई क्या बात है अमित जी, ये तो बड़ा अच्छा किस्सा है। और आप आगे लिखते हैं कि इसीलिए आज का ये ट्रैक जो है ये मैं अपनी वाइफ को सुनवाना चाहता हूँ अंजलि के लिए, खास तौर से प्लीज प्ले कर दीजिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का टाइटल ट्रैक, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अमित जी इतना रोमांटिक मूड आपने बना दिया, अभी पहली बार थिएटर गए, पहली बार फिल्म देखी, और देखी तो किसके साथ, उसके साथ जो आपकी फ्यूचर वाइफ होने वाली थी। तो अंजलि जी आप बहुत लकी हैं कि आपके हस्बैंड ने सिर्फ आपके साथ ही पहली फिल्म देखी और शायद आखिरी भी। तो चलिए फिर आज आपके नाम ये ट्रैक प्ले करते हैं, फिल्म डीडीएलजे से प्ले करते हैं कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में तुझे देखा तो ये जाना सनम। एंजॉय कीजिए और हमारे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई क्या बात है, राज और सिमरन का ये रोमांस ब्रिस्बेन की हवाओं में भी तैरने लगा है. वैसे आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत आपकी अपनी सताक्षी के साथ, और आपकी पसंद के गाने हम प्ले करते रहेंगे आपके लिए. लेकिन अभी मेरी पसंद मुझसे कह रही है कि मैं आपके लिए एक अगला गाना प्ले करूं, तो एंजॉय कीजिए एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन सताक्षी के साथ. सुनते रहिए फरमाइशी गीत.

चलिए अब रुक करते हैं जरा ब्रिस्बेन के सनीबैंक इलाके की तरफ, जहां से हमारी अगली कॉलर सुनीता की लाइन हमसे जुड़ गई है और आपका मेल आ पहुंचा है हम तक। सुनीता जी ने कहा है कि उनके घर पर आज संडे स्पेशल लंच बन रहा है और वो खाना बनाते बनाते मोहम्मद रफी साहब का कोई सदाबहार गाना सुनना चाहती हैं। तो सुनीता जी, आपकी फरमाइश सराखों पर, और आप ये गाना डेडिकेट कर रही हैं सिडनी में रह रहे अपने पूरे परिवार को, जो आज उन्हें बहुत याद आ रहा है। तो भाई, जब परिवार दूर होता है तो उसकी याद आना लाजमी है, खासकर अगर घर पर स्पेशल लंच बन रहा हो तो। खैर, उसकी खुशबू हम तक भी पहुंच रही है और इस जादुई खुशबू को थोड़ा और जादुई बनाते हैं रफी साहब की आवाज के साथ। आइए सुनिए ये अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, और सुनते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171।

है, है ना। तो बस आप अगर आउटिंग पे निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ी के वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, इतना नहीं कि पीछे की गाड़ी की हॉर्न आपको सुनाई ना दे। हाँ लेकिन भाई झूमते नाचते गाते आउटिंग करने का तो मजा ही कुछ और है, है ना। तो चलिए आप ये अगला ट्रैक सुनिए मेरे साथ और अपनी ड्राइव पर निकल पड़िए। मैं प्ले करती हूँ ये गाना और आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी सताशी के साथ, आप सुन रहे हैं इस वक्त फरमाइशी गीत।

इस वक्त हमारे साथ कौन है? इस वक्त हमारे साथ राहुल में हैं, जो वाकई अपनी कार में हैं और ब्रिस्बेन की सड़कों पर लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे हैं। राहुल ने हमें मैसेज करके अपनी फरमाइश भेज दी है और उदित नारायण और अलका याग्निक के एक ऐसे गाने को आप सुनना चाहते हैं जिसने 90s में हर आशिक के दिल की धड़कन को बढ़ा दिया था। आप सुनना चाहते हैं फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे, राजा को रानी से प्यार हो गया। तो भाई राजा, अगर रानी से प्यार हो गया है तो ये गाना आप सबके लिए है। और ये गाना आप अपने उन सभी दोस्तों को डेडिकेट कर रहे हैं जो आज ब्रिस्बेन में उनके साथ इस वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए राहुल आपके दोस्तों के नाम प्ले करते हैं अकेले हम अकेले तुमसे, राजा को रानी से प्यार हो गया। सुनिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत और बने रहिए रेडियो ब्रिस्बेन पर।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: रेडियो ब्रिस्वानी पर फरमाइशी गीत, आपकी फरमाइशों के सफर को सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं और शो का मजा ले रहे हैं। आई होप कि ये शो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो मौसम का सुहानापन और ज्यादा सुहाना हो गया है वीकेंड के साथ, ऐसे में दिल चाहता है कि एक बढ़िया सा गाना सुन लिया जाए। तो चलिए इस अगले ट्रैक के साथ आगे बढ़िए। और हाँ भाई, आप हमें लिखते रहिए ना रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पर। अगला मैसेज किसका है आपके साथ बांटूंगी इस अगले ट्रैक के उस पर। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी।

तो हमारे पास जो अगली मेल पहुंची है वो है मेलबर्न से, और ये है विक्रम। विक्रम का कहना है कि मैं एक बड़ा संजीदा इंसान हूं और मैं जगजीत सिंह साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। विक्रम जी ने फरमाइश की है कि जगजीत सिंह साहब की वो गजल बजाई जाए जो जिंदगी के सच को बयां करती है, और ये गजल आप डेडिकेट करना चाहते हैं शेर व शायरी के सभी शौकीन साथियों को, उन सभी को जो आज संडे मना रहे हैं और एक गजल सुनना चाहते हैं। तो लीजिए भाई, आपने तो हमारे सभी लिसनर्स के नाम ये गजल डेडिकेट कर दी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा होगा जो गजलें ना सुनता हो, मतलब सभी को पसंद है यहाँ पर, है ना। तो चलिए आपकी खास पसंद के नाम ये गजल पेश करती हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सुनिए इस गजल को और सुनते रहिए सदाक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी, और बने रहिए फरमाइशी गीतों में।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: ये गजलें और ये जो गाने आप सुन रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर इस वक्त। जी हाँ, आपकी हम सफर सताक्षी इस वक्त लाइव रेडियो प्रस्वानी के स्टूडियो से आपके साथ जुड़ी हुई है। सफर है फरमाइशी की। तो अगले गाने का वेट आप कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, और मैं तो भाई अगले मेल का वेट कर रही हूँ कि कौन है हमारे लकी लिसनर जिनका मेल अब हम लेने जा रहे हैं। लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद इस गाने के इस पार एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

नमस्कार, आदाब। ढलती हुई शाम कुछ ख्याल ले आती है और बस उन्हीं ख्यालात के साथ रात गुजरती है। सामीन, जब भी आपका ख्याल आता है, मेरा दिल यही कहता है कि वो इत्र की शीशी बेवजह इतराती है खुद पर, वो इत्र की शीशी बेवजह इतराती है खुद पर, हम तो तुम्हारे ख्यालों से ही महक जाते हैं। आपसे मुलाकात का समय तय है और हाजिर है गजलों का कारवां लेकर आपका रेडियो हम सफर। निलय प्रोग्राम है कारवां गजल और आपने ट्यून इन किया है रेडियो ब्रिस्वानी। साज तैयार हैं, सुर सजे हुए हैं, तो आगाज करते हैं महफिल का। अदा देखो नकाबे चश्म वो कैसे उठाते हैं, अदा देखो नकाबे चश्म वो कैसे उठाते हैं, अभी तो पी नहीं फिर भी कदम क्यों डगमगाते हैं, जरा अंदाज तो देखो न है तलवार हाथों में, हमारा दिल ज़बह कर खून से मेहंदी रचाते हैं। हमें मंजूर है गर गैर से भी प्यार हो जाए, कम अज कम सीख जाएंगे कि दिल कैसे लगाते हैं। सुना है आज वो हमसे खफा हैं, बेरुखी भी है, नजर से नजर हर बार क्यों हमसे मिलाते हैं।

कुछ यूं लगता है तेरे साथ ही गुजारा वो भी, हमने जो वक्त तेरे साथ गुजारा ही नहीं। जब ये अशआर पढ़ते हैं तो इन्हीं के साथ गालिब का अंदाज भी याद आ जाता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। कहने को बात एक सी होती है, अंदाज बदल जाते हैं। मुझे लगता है जिंदगी हर किसी को दिल की मोहब्बत से नवाजती है, आपको भी नवाजा होगा। मोहब्बत ख्यालों को खूबसूरत बनाती है, आपको है कि नहीं? वो नजर देती है जिससे वादियां खूबसूरत लगने लगती हैं। हर वो बात जो दिल भर से जुड़ी हो वो दिलकश लगने लगती है। निलय के साथ हैं आप कारवाएं गजल की शमाए रोशनी से, दिल आबाद रखिएगा और सुनते रहेगा कारवाएं गजल। अजब हाल अपना होता जो विसाले यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता। न मजा है दुश्मनी में न लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता कोई यार यार होता। ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, न तुम्हें करार होता न हमें करार होता। तेरे वादे पे सितमगर अभी और सब्र करते, अगर अपनी जिंदगी का हमें एतबार होता।

नमस्कार आदाब, एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। मैं हूँ आपका रेडियो हम सफर, निलय है मेरा नाम। दिल की बात को जाहिर करना चाहिए कि नहीं, इस बात को लेकर लोगों में बड़ी कश्मकश होती है। दिल की बात कही नहीं जाती एक अजीब से डर की वजह से कि कहीं दिल की मोहब्बत को कोई ठुकरा ना दे, ना कह दे। पर हुजूर, इतना आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखना, है ना। दूर भले वो हो जाए लेकिन दिल से उसे निकाल पाना आई थिंक नामुमकिन ही होता है। इसी ख्याल के साथ निदा फाजली साहब की बात एकदम सही लगती है कि तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए। अपना सोचा हुआ नहीं होता, वरना होने को क्या नहीं होता। उसकी आदत फकीर जैसी है, कुछ भी कह लो खफा नहीं होता। न मसलते यूं संग दिल इसको, दिल अगर फूल सा नहीं होता। याद आते न शबनमी लम्हे, जख्म कोई हरा नहीं होता। ख्वाब में होती है फकत मंजिल, पर कोई रास्ता नहीं होता। इश्क बस एक बार होता है, फिर कभी हौसला नहीं होता। हद से गुजरे हजार बार भले, हद से गुजरे हजार बार भले, दर्द फिर भी दवा नहीं होता। आप सुन रहे रेडियो ब्रिस्वानी पर गजलों का कारवां, कारवां गजल। इस कारवां को आगे बढ़ाते इन नगमों और गजलों के साथ।

अजब दिन थे कि इन आंखों में कोई ख्वाब रहता था। कभी हासिल हमें खसखाना और बर्फाब रहता था। उभरना डूबना अब कश्तियों का हम कहां देखें, वो दरिया क्या हुआ जिसमें सदा गिरदाब रहता था। वो सूरज सो गया है बर्फजारों में कहीं जाकर, धड़कता रात दिन जिससे दिले बेताब रहता था। निलय के साथ हैं, आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, आज भी उसी का कहलाता हूं मैं। जब कोई किसी से दिल से मोहब्बत करता है ना, तो जैसे दो रूह एक हो जाती हैं। रस्म उल्फत निभाना इतना भी आसान नहीं होता, जमाने की बनाई दीवारों को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। जनाब, मोहब्बत का एक और नाम है दीवानगी, जो इस कदर सर चढ़कर बोलती है कि उन्हीं लम्हों को ताजा किया करता है दिल जो साथ गुजारे थे। आज भी वही पहचान सही लगती है जो उसके नाम के साथ जुड़ी हो। हमारी पहचान है मोहब्बत, जो दिल से दिल को जोड़कर रखती है। जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, हमारी सब किताबों में एक ऐसा बाब रहता था। सुहाने मौसमों में उसकी तुगयानी कयामत थी, सुहाने मौसमों में उसकी तुगयानी कयामत थी, जो दरिया गर्मियों की धूप में पायाब रहता था। मुफलिसी में ख्याल अब हमसे कोई वादा वफा नहीं होता।

मोहब्बत और दोस्ती कहीं ना कहीं एक ही राह की ओर चलने वाले दो मुसाफिरों की तरह होते हैं। वो मुसाफिर जो साथ होते हुए भी कई बार नजरें चुरा लेते हैं। दोस्त अगर बरसों बाद मिले तो नजरें मिलाकर दिल का हाल बयां कर देते हैं, वहीं मोहब्बत अगर बरसों बाद मिले तो नजरें चुरा कर उसके खो जाने का एहसास करा देती है। इसीलिए हुजूर निले आपसे कह रहा है कि दोस्त हो या मोहब्बत, दिल में संभाल कर रखिए। नजरें चुरा कर नहीं, नजरें मिलाकर मिलिएगा। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरी तो नहीं कि शायरी वो ही करे जो इश्क में हो, जिंदगी भी कुछ जख्म बेमिसाल दिया करती है। सुधरे कारवाई गजल रेडियो सफर निलय के साथ। दिल पर हाथ रखिए और अपनी मुस्कान को बरकरार रखिए। पेश खिदमत है अगली गजल आपके लिए। अजब एक शोर सा बरपा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ अब से पहले भी हो चुका है कहीं, जो यहां से कहीं न जाता था वो यहां से चला गया है कहीं, तुझको क्या हो गया कि चीजों को कहीं रखता है, ढूंढता है कहीं।

यह हकीकत है कि वक्त सब कुछ बदल देता है। एक उम्मीद रहती है कि अनजाने में ही वक्त कई बार सब कुछ बेहतर कर देगा। वक्त जाते हुए किसी को दिखता नहीं, बीता वक्त कितनी सारी यादें समेटे हुए होता है, जिंदगी के लम्हे समाये हुए होता है, और हम इसी उम्मीद में वक्त गुजारते हैं कि वक्त के सहारे हम इस दर्द को सह ही जाएंगे। हवाएं बहती हैं और ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे छुआ है, और फिर वो छुपाया हुआ दर्द आंखों की नमी में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। सामने का नजारा कब धुंधला हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये तीर दिल में मगर बेसबब नहीं उतरा, कोई तो हर्फ लबे चरागार से निकला था। मैं रात टूट के रोया तो चैन से सोया, कि दिल का दर्द मेरे चश्मे तर से निकला था। वो कैसे अब जिसे मजनू पुकारते हैं फराज, वो कैसे अब जिसे मजनू पुकारते हैं फराज, मेरी तरह कोई दीवाना घर से निकला था। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। रेडियो ब्रिस्वानी पर सुनते रहिए।

0: जीने।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: कारवाई।

0: वेलकम बैक खवातीन हजरात। एक ख्याल आपसे बांटना चाहूंगा कि दुनिया की इस भीड़ में अपनी पहचान बहुत जरूरी है भाई। छोटी हो अपनी पहचान, लेकिन वो होती अपनी ही है। किसी के साए में उम्र गुजार देना आसान जरूर होता है। हर शख्स को कोशिश करना चाहिए कि दुनिया की भीड़ में उसका भी अपना एक नाम हो। कुछ लोगों के ही सही, पर दिलों पर उसका भी नाम हो। और जब कोशिशों के बाद अपनी पहचान बन जाती है, तब वो खुशी, वो एहसास, वो जज्बा, वो सब कुछ मिल जाता है जिसे बयां कर पाना भी मुश्किल होता है। पर जनाब संभल कर, क्योंकि हम कई बार नाम को बड़ा करने के लिए जब सहारे की तलाश करते हैं ना, तब इस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा, क्योंकि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया से समंदर मिले, दरिया नहीं रहता। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर कारवाई गजल निले के साथ। आपके इस शहर में गुजारा नहीं, अजनबी को कहीं पर सहारा नहीं। बह गया मैं अगर तो बुरा क्या हुआ, खींच लेती किसे तेज धारा नहीं। आरजू में जन्म भर खड़ा मैं रहा, आपने ही कभी तो पुकारा नहीं। हाथ मैंने बढ़ाया किया बारहा, आपको साथ मेरा गवारा नहीं।
1: कभी

0: तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: दोस्तों हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि आप जो भी काम कर लीजिए उनको आप खुश नहीं कर सकते। नुक्स नुक्स निकालते हैं वो, और नुक्स निकालना उनकी आदत में शुमार होता है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर होता है भाई। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप जान से भी अजीज समझते हैं, पर वक्त बदलते ही वो भी ऐसे बदल जाते हैं मानो कभी हाथ में हाथ था ही नहीं। ऐसे मिलते हैं जैसे कभी हम सफर थे ही नहीं, कभी हम भी इस कदर करीब थे, दिलो जान से बढ़कर अजीज थे, मगर आज ऐसे मिला है वो कभी पहले जैसे मिला ना हो। सारी उम्मीदें वादे वफा जैसे सिर्फ नाम के थे, कभी तो चौंक के देखे वो हमारी तरफ, किसी की आंख में हमें भी इंतजार तो दिखे। तभी एक और दिल ये भी कहता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अजीब बात है, खुद से नजर चुराता है मगर वो दूसरों को आईना दिखाता है। जो कल तलक मेरी उंगली पकड़ के चलता था वो शख्स आज मुझे रास्ता दिखाता है। उसे खबर है कि बन जाएगी मेरी जां पर, मगर वो फिर भी मेरा जर्फ आजमाता है। बहुत गुरूर न कर अपनी खुशनसीबी पर, बहुत गुरूर न कर अपनी खुशनसीबी पर, नसीब आज हंसाता है कल रुलाता।

जरा सी बात का बलाल करते हो, शिकायतें भी वही हैं जहां मोहब्बत है। कितनी सही बात है ना ये। बाकी जहां मोहब्बत होती है वहीं उम्मीद भी होती है, और इसीलिए शिकायतें भी होंगी ही। लेकिन हुजूर, ज्यादा उम्मीदी भी बड़ी गलत है, क्योंकि इससे रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। जितनी आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतने ही नुकसान में रहेंगे। कई बार बात को रखने के लिए यूं ही हाँ कह देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। लेकिन सोचिए, क्या ये सही है? बनावटी रिश्तों को बनाए रखना ना उम्मीदी को बुलावा देने जैसा है। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आपका और मेरा रिश्ता ना झूठे वादे पर टिका है और ना किसी उम्मीद पर। आपका और मेरा दिल से दिल का नाता यूं ही नहीं बना है। इसी एतमाद और यकीन के साथ अगली गजल आपके लिए पेश कर रहा हूं, सुनिए। अदाए हैरत आईना गर भी रखते हैं, हमें न छेड़ के अब तक नजर भी रखते हैं। न गिर्दो पेश से इस दर्जा बेनियाज गुजर, जो बेखबर से हैं सबकी खबर भी रखते हैं। कफस को खोल मगर इतना सोच ले सयाद, बहुत असीर तेरे बालों पर भी रखते हैं। फरिश्ता है तो तकद्दस तुझे मुबारक हो, हम आदमी हैं तो ऐबो हुनर भी रखते हैं।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कारवाई गजल निलय के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उन हर्फों का जरिया बनाकर शायर कितने ही सारे ख्याल हमारे दिलो दिमाग में उतार देता है। शब्द कहिए या कई बार रंग कहिए, सब जैसे बोलते हैं हमसे, कुछ ना कुछ कहना चाहते हो। बस उनकी भाषा समझनी जरूरी है, उनके अंदाज को अपनाना जरूरी है। लेकर चले थे कारवां कुछ जज्बातों का, लेकर चले थे कारवां कुछ जज्बातों का, बस कुछ देर और ठहर कर उठ जाना है। मैं निलय हूं, थोड़ी देर और आपके साथ। आप सुन रहे रेडियो ब्रिस्वानी पर कारवाई गजल, सुनते रहिए। अपनी आंखों को अकीदत से लगा के रख ली, तेरी दहलीज की मिट्टी थी उठा के रख ली, तुझको तकते ही रहे रात बहुत देर तलक, चांद की ताक में तस्वीर सजा के रख ली, दिल सी नौखेज कली तेरी मोहब्बत के लिए, सींच के जज्बों से पहलू में खिला के रख ली, इस नए साल के स्वागत के लिए पहले से हमने पोशाक उदासी की सिला के रख ली, दम उलझता था शबे तीरा का तारीखी से, इसलिए चांद की किंदील जला के रख ली।

जब दो लोग प्यार में एक साथ रहते हैं तो आदत पड़ जाती है एक दूसरे की। वक्त आने पर ना आदत छूटती है और न प्यार। वेलकम बैक, मैं हूं नीले आपके साथ और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। प्यार भी तो आदत की तरह होता है, कुछ रिश्ते भी तो आदत बन जाते हैं, ऐसी आदत जिनको बदल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। न कोई छोड़ रहा है न कोई खींचता है, मैं अपने आप बहे जाता हूं नदी की तरह। न डूबता हूं न रुकता हूं न सूखता हूं, उस एक शख्स को तलाशते हुए, उस आदत को संभाले हुए एक उम्र सी गुजर जाती है। रेत पर उसके पैरों की मोहरों को तकते हुए एक उम्र सी गुजर जाती है। चलिए सुनते रहिए कारवाई गजल, इस महफिल को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त बस हो ही चला है, आप तो बस बने रहिएगा हमारे साथ। अजब मौसम है मेरे हर कदम पे फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। हर आंसू में कोई तस्वीर अक्सर झिलमिलाती है, हर आंसू में कोई तस्वीर अक्सर झिलमिलाती है, तुम्हें आंखें बताएंगी दिलों में कौन जलता है। मोहब्बत गम की बारिश है, जमीन सरसब्ज होती है। मोहब्बत गम की बारिश है, जमीन सरसब्ज होती है, बहुत से फूल खिलते हैं जहां बादल।

वो कहते हैं ना कि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त की बात माननी पड़ती है भाई। और ये दस्तूर है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है, लेकिन इस जुदाई में भी साथ रहेगी आपकी यादों की खुशबू। जो वक्त आपने मेरे साथ गुजारा, मैंने जो आपके साथ गुजारा है, उसे याद करते करते हम अगले हफ्ते फिर मिलने आ जाएंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद कर लिया कीजिएगा, और हाँ अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखिएगा। सुनते रहिएगा रेडियो ब्रिजवानी, इन्हीं बातों के साथ गजलों का एक कारवां अपनी मंजिल तक आ पहुंचा। तो आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले संडे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जाते जाते कुछ कह देता हूँ आपके लिए, अपनी जुल्फों को सितारों के हवाले कर दो, शहरे गुल बादा गुसारों के हवाले कर दो, तलखिए होश हो या मस्तीए इदरा के जुनू, तलखिए होश हो या मस्तीए इदरा के जुनू, आज हर चीज बहारों के हवाले कर दो, मुझको यारो न करो रहनुमाओं के सुपुर्द, मुझको तुम रह गुजारों के हवाले कर दो, जागने वाले का तूफान से कर दो रिश्ता, जागने वालों का तूफान से कर दो रिश्ता, सोने वालों को किनारों के हवाले कर दो। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, नमस्कार, टेक केयर।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

ना बदला में ना बदला।

0: 뭐가?
1: यूएस के इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

जीवन बहुत खूबसूरत है। ये किसी धर्म, सीमा, जाति, उम्र या फिर देश में नहीं बटा है। जीवन तो जीवन है, जिसे जीने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ हम जीवन जिए। हमें से कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, उत्पात हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स हों। नहीं ना, हम सब खुशी खुशी रहना ही तो चाहते हैं। तो फिर हमारी जिंदगी में ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाइयाँ, ये सब आता कहाँ से है? आइए आज मिलकर इसी पर विचार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी, आपके साथ आज एक बार फिर से हमारे सफर जीवन आधार में। जीवन आधार में जुड़ेंगे हमारी बातों के साथ, लेकिन इस एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी।

एचपीस्वानी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जीवन के आधार को आज एक बार फिर से हम साथ समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके जीवन में सारा खेल विचारों का है। आपके थॉट्स जो हैं वो या तो आपको बना देते हैं या आपको बिगाड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी स्वयं यही तो कहा है कि जीवन में सारा खेल विचारों का है। आप चाहें तो अपने विचारों से अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उन्हें बदल सकते हैं, आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और यही विचार आप कोई अच्छे खासे करियर को खराब करके आपको मिटाने का भी काम करते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी।

रेडियो पिसवानी पर जिंदगी के नाजो नखरों से दूर खुद को, खुद की सच्चाई को और इस सृष्टि को जानने का सफर है जीवन आधार। इसी सफर में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ। आइए जीवन आधार में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो पिसवानी।

अक्सर हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण तो ये बात है कि आप अपनी दृष्टि में क्या हैं, आप खुद को कितना मानते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं और आप खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो खुद को पहचानिए, दूसरों से अपनी पहचान की उम्मीद रखना बंद कीजिए। और आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

खुद को जानने का और उस परम शक्ति से मिलने का जो इस सृष्टि का पालनहार है। ये सफर है जिसका नाम है जीवन आधार। जीवन आधार पर आज हम एक बार फिर से जिंदगी को, जीवन को इस सुबह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सफर के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत यहाँ पर सुनेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

कहते हैं कि आप जो विचार रखते हैं ना दोस्तों, वही आपके शब्द बनते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं ना वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही तो हम बन जाते हैं। बात नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। अपने सोचे हुए को ही तो आप अंजाम देते हैं। अब देखिए ना, एक इंसान पूजा के पहले भी सोचता है और मर्डर करने के पहले भी सोचता है। कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, वही आपके एक्शंस होते हैं, वही काम आप करते हैं, यानी कि वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म ही आपको बनाते हैं। इसलिए सबसे पहली शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, जीवन अच्छा होता जाएगा। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं इसी जीवन के सफर में आगे, जीवन आधार में।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM पर। ये सफर जो है ये अपनों के साथ के साथ साथ उनका साथ निभाने का भी है जो हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन हम उनके भी हित को, उनके भी खुशियों को ध्यान में रखें और कर्म करें, यानी हम इंसान बने, इसी बात को ध्यान में रखने का सफर है जीवन आधार। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

मन, कहते हैं मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, लेकिन ये मन बहुत जल्दी अपनी शांति भी छोड़ देता है। यानी किसी के बिहेवियर पर कई बार हमारा मन डिपेंड हो जाता है। लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो हमारा मन भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हुआ तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार का असर आपके मन की शांति पर ना पड़े, वो जितना शांत है उतना ही रहे, विचलित ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोतो, ये था एक और जीवन आधार का सफर रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। जीवन आधार की एक और कड़ी के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर से रेडियो प्रसवानी पर मुलाकात। आज के सफर से आप सताक्षी इजाजत चाहेगी। नमस्कार।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: कह दूँ तुम्हें
10: हाँ
9: या चुप रहूँ
10: ना
9: दिल में मेरे आज क्या है
10: क्या है.

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूं ये जो प्यारा सा वीकेंड गुजरा है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजरा होगा और आप सभी ने बहुत ही एंजॉय किया होगा। ऐसी ही एंजॉयमेंट बनी रहे इस सफर में भी, यही मेरी कामना है और कोशिश है कि आप सभी का यह सफर भी बेहतरीन जाए। आज है मंडे और इस शुभ दिन में आप सभी का शुभ दिन तो बनाना मेरे को बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और मैं जब जुड़ेंगे तो बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलेगी, इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलेगी और बहुत प्यारे प्यारे गीत आप सभी को सुनने को मिलेगा, जो कि आपके दिन को, सुबह को बहुत ही मनोरंजन आप सभी का कर सकती है ये गीत। क्योंकि कहते हैं ना, सुबह सुबह चाय कॉफी के साथ कुछ सुहाने और सुहावने मौसम में प्यारे प्यारे गीत हो जाए तो मजा ही कुछ और है। तो ऐसे गीत आपको सुनाएगी आपकी दोस्त चांदनी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं ये गीत, शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम यानी कि चांदनी के सफर की इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे देश और दुनिया की आप सभी को बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें सुनानी है, ब्रेकिंग अपडेट्स देनी है, मौसम, खेल और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसकी कुछ खास जानकारी आप सभी को देनी है। तो आइए फिर कुछ नजर मारते हैं देश के कुछ हिस्सों की जहां पर बहुत सारी मतलब अपडेट्स जो है वो सामने आई है जो सुनाने और बताने लायक है। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में जांच तेज और कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर सामने आई है। प्रशासन ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की भी चेतावनी दी गई है। आपको साथ में ये भी बता दें कि देश भर में मॉनसून की गतिविधियां जो है वो बढ़ने की उम्मीद है और किसानों के लिए ये राहत की खबर है, लेकिन बहुत से जगहों में बहुत से लोगों को भी सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है प्रशासन द्वारा। वहीं पर कई राज्यों में जल प्रभाव और यातायात प्रभावित होने की आशंका, प्रशासन ने कंट्रोल रूम सक्रिय किए हैं। ऐसे ही आप सभी को इंटरनेशनल खबरें मैं आप सभी के बीच अपडेट्स लेकर आऊंगी। थोड़ी ही देर बाद आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिसवानी में।

एक बार जी फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी अपनी दोस्त आरजी चानी जैन के साथ। और कैसे लग रहे हैं ये गीत? एंड आई होप कि आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, है ना? तो जरूर मैसेज कीजिए भाई एंजॉय हो रहा है, सफर अच्छा लग रहा है। तो आइए थोड़ी सी हम नजर डालते हैं स्पोर्ट्स में। भारत और इंग्लैंड के बीच जो तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने बड़ा स्कोर खड़ा किया है, अब सबकी नजर जो है वो भारत की बल्लेबाजी पर है। वहीं पर फुटबॉल विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच तीसरे स्थान के मुकाबले ने खेल जो है प्रेमियों का ध्यान खींचा है। वहीं पे दोस्तों बॉलीवुड की चर्चित फिल्म हीरा फेरी 3 को लेकर भी काफी चर्चाएं तेज हो चुकी है, प्रशंसकों में काफी उत्साह बना हुआ है। तो ये भी मतलब प्रोजेक्ट और हीरा फेरी 3 की जो मूवी है वो भी लगता है सामने आ रही है। ये भी प्रोजेक्ट जो है इसमें जोर शोर से तैयारी हो चुकी है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम बैक आप सभी का रेडियो ब्रिजवानी में। आप सभी सुन रहे हैं आरजे जानी जैन को और यहाँ पे आप सभी को न्यू अपडेट्स मिल रही हैं। तो आइए अब थोड़ी सी नजर डालते हैं ब्रिस्बेन की कुछ लोकल न्यूज में। ब्रिस्बेन बीएमएक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रिस्बेन में जो आयोजित 2026 यूसीआई बीएमएक्स रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के एलीट जो हैं फाइनल्स तेज हवाओं के कारण रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई राइडर्स जेस एस्मस और जोश जॉली ने क्वालिफाइंग टाइम के आधार पर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पर ब्रिस्बेन स्कूल का एक इंसिडेंट सामने आया है। ब्रिस्बेन के एक स्कूल में चाकूबाजी की घटना के बाद एक किशोर पर आरोप तय किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं पर अगर आपको अगली खबर की ओर नजर डालें तो भाई प्रॉपर्टी मार्केट में जो भी काम करते हैं या फिर इस फील्ड में कोई भी है तो उनके लिए थोड़ी सी भाई नरमी वाली खबर सामने आई है। यानी कि आप को बस अब थोड़ा सा धैर्य रखना है क्योंकि दोस्तों ब्रिस्बेन के प्रॉपर्टी मार्केट में हल्की सी नरमी देखने को मिली है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि खरीदारों के लिए अब पहले की तुलना में बेहतर अवसर बन रहे हैं। तो इसीलिए जी जो भी प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हैं इस फील्ड में है तो भाई थोड़ा सा पेशेंस और रखें क्योंकि सुधार आने की संभावना जताई जा रही है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

वाह जी वाह, क्या गीत आप सभी ने सुना है चाने के सफर प्रोग्राम में। और वैसे दोस्तों फेस्टिवल्स की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि ब्रिस्बेन में पहली बार जो है एफ्रोसोल फेस्टिवल 2026 आयोजित होने जा रहा है, जिसमें कि

वाह जी वाह, क्या गीत आप सभी ने सुना है चाने के सफर प्रोग्राम में। और वैसे दोस्तों, फेस्टिवल्स की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि ब्रिस्बेन में पहली बार जो है एफ्रोसोल फेस्टिवल 2026 आयोजित होने जा रहा है, जिसमें कि कई

वाह जी वाह, क्या गीत आप सभी ने सुना है चाने के सफर प्रोग्राम में। और वैसे दोस्तों, फेस्टिवल्स की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि ब्रिस्बेन में पहली बार जो है एफ्रोसोल फेस्टिवल 2026 आयोजित होने जा रहा है, जिसमें कि कई

0: हाँ जी, तो सुन लिया ना आपने, बहुत प्यारे प्यारे गीत हो गए ना एनर्जेटिक। तो चलिए फिर कुछ तड़का लगाते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में, क्योंकि अब वक्त हो गया है दोस्तों एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों का, जहाँ पर ग्लैमर है, गॉसिप है और है स्टार्स की हर छोटी बड़ी अपडेट, जो चांदनी ना आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे बस अपना वॉल्यूम जो है ना, अरे अपना वॉल्यूम नहीं, सॉरी, रेडियो का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि वे शुरू हो रहा है आप सभी के बीच एंटरटेनमेंट बज। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम गॉसिप की बात करें ना, तो सबसे पहली जो खबर है वो भाई ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक लवर्स के लिए है। पॉप सेंसेशन डेल्टा गुडरम ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। हाँ जी, बड़ा सरप्राइज। अरे सुनिए, उन्होंने अपने पूरे वर्ल्ड टूर 2027 का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया है अब, और ऑस्ट्रेलिया भी ना इस टूर का हिस्सा होगा ये भी बताया है। अब फैंस जो है भाई अभी से ही टिकट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 2026 खत्म भी नहीं हुआ। वहीं पर अगर मैं दूसरे गॉसिप की बात करूँ ना, अरे रुक जाइए, सुनाऊंगी वो भी मैं आप सभी से, अपडेट शेयर जरूर करूंगी, लेकिन इस गीत के बाद सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में आप सभी सुन रहे हैं अपनी दोस्त आरजे जानी जैन को। और ये जो सेगमेंट चला है वो चला है भाई एंटरटेनमेंट, गॉसिप तो बनती है भाई। अब जब तक हम पूरे दिन में गॉसिप ना करें जी मजा नहीं आता ना, तो चलिए सुने दूसरी गॉसिप। दोस्तों अब एक ऐसी गॉसिप है ना जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। हाँ जी खूब चर्चा, अरे आपको नहीं पता तो आइए सुनिए फिर। सुपर मॉडल कैंडल जेनर और ऑस्ट्रेलियन एक्टर जैकॉब एलॉटी को ऑस्ट्रेलिया में ना एक साथ देखा गया। बस फिर क्या था भाई, डेटिंग र्यूमर्स ने भाई एक बार फिर से जोर से पकड़ लिया। दोनों की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, बस अब ये इंतजार करना है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आने वाला है, यस और नो। हाँ जी आपको क्या लगता है क्या होगा, हाँ या ना, सोचकर जल्दी जल्दी से मैसेज करके जरूर बताएं। हाँ जी तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं रेडियो ब्रिस्बानी में नेक्स्ट ट्रैक।

0: वेलकम बैक टू रेडियो बिस्वानी में। तो दोस्तों, ये थी एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ भाई गरम गरम, हाँ जी गर्मा गरम और चटपटी अपडेट्स। ऐसे ही फ्रेश गॉसिप्स और लेटेस्ट बज के लिए बने रहिए आप सभी रेडियो बिस्वानी के साथ। लेकिन और आरजीज आप सभी को एंटरटेन जरूर करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि जी और गॉसिप भी तो मैंने इकट्ठी करनी है कल सुनाने के लिए। सुनते रहिए रेडियो बिस्वानी, मुझे दीजिए इजाजत एंड हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर, बाय बाय।
1: दो प्यार करने वाले नु
2: कदे कोई वक्त नहीं कर सकता,
1: जब तक
2: वो आप ना चाहो।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। श्रीलंका में डेंगू से 56 लोगों की मौत, जुलाई में 20,000 नए मामले। श्रीलंका पिछले करीब 10 सालों में डेंगू के सबसे बुरे प्रकोप का सामना कर रहा है। ये बीमारी इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि सरकार को इससे निपटने के लिए ड्रोन तैनात करने पड़े हैं। मिलिट्री ड्रोन की मदद से छतों और मच्छरों के पनपने वाली जगहों का पता लगाया जा रहा है और जगह जगह जमा पानी का पता लगाकर डेंगू फैलने से रोका जा रहा है। हिटलर के जन्म स्थान में खुला पुलिस स्टेशन। ऑस्ट्रिया ने जर्मन तानाशाह की भयानक विरासत को दी नई पहचान। ऑस्ट्रिया के ब्रैनो एम इन शहर में उस घर में एक पुलिस स्टेशन खोला गया है जहां जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। ये 17वीं सदी के पुराने सराय के बारे में सालों से चल रहे विवाद के बाद हुआ है। इसी घर में अप्रैल 1889 में नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। सिक्किम टनल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 25, सभी शव बाहर निकाले गए। NHPC तीस्ता स्टेज 6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान देर रात तक जारी रहा। बचाव दलों ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अभियान को जारी रखा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समर्थन में पोस्ट हटाए। IIT मद्रास ने छात्रों से इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर किया आगाह। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां इन छात्रों का नारा लगाकर बैनर पर अपनी बात लिखकर या फिर छोटे वीडियो बनाकर समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने छात्रों से कहा है कि वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियोस को हटा दें। IIT मद्रास के एक छात्र ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, यूनिवर्सिटी ने हमसे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में डाले गए इंस्टाग्राम वीडियो को हटाने के लिए कहा है। तबीयत बिगड़ने पर जंतर मंतर से हटे अभिजीत दीप के। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। तेज बुखार और शरीर में दर्द के कारण उन्हें मजबूरी में प्रदर्शन स्थल से हटना पड़ा। इसकी जानकारी दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। आइए जुड़ते हैं अब खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। कॉमनवेल्थ गेम्स में 125 भारतीय खिलाड़ी 6 खेलों में उतरेंगे। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस इवेंट में 74 देशों के 3,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 10 खेलों में 215 गोल्ड सहित कुल 1,168 मेडल दाव पर होंगे। भारत के 125 खिलाड़ी 8 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो ओमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा.
2: बिल्कुल. खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
3: अरे वाह, इनका पता बताना.
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: Okay. I'm back. And I'll play another favorite from Simba. I'm sure you all love this song as well.

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे ही ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।

0: नमस्कार आदाब वेलकम। एक बार फिर से एक नई सुबह हो चुकी है और इस नई सुबह के नए आगाज साथ जुड़ चुकी है आप नया दिन है, नई खूबसूरती है, नए गोल्स हैं, नए सपने हैं और इन सपनों को बेटर तो हमें बनाना है। सुबह कैसे कैसे हैं आप? देखिए अगर अभी तक ब्लैंकेट के अंदर हैं और क्लॉक देख रहे हैं एक आंख खोल के बाहर निकालने के लिए, तो भाई उसे बंद कीजिए, अलार्म को बंद कीजिए, साइड में रखिए और उठ जाइए, ठंडी हवा का झोंका फील कीजिए, विंडो पर जाइए, अपनी विंडो को ओपन कीजिए और एहसास डूबिए कि यार ये सुबह कितनी खूबसूरत है और इस सुबह के साथ आपका दिन कितना बेहतरीन वाला है।
1: लाल
0: बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाते जाना है,
1: उसकी शुरुआत इस अगले साथ के साथ होनी चाहिए, है ना? तो एंजॉय कीजिए,
0: अताशी के साथ ये छापें
1: बहुत जबरदस्त आपके साथ बांटे जाएंगे।
0: Listening to Radio Prasthani.

वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसके पहले कि आपके साथ आज की बातें करूं, सबसे पहले उन्हें विश कर दूं जिनका आज बर्थडे है। सो बर्थडे बेबीज, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। और बस दुआ इतनी है कि यार जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, कदम से कदम मिलाते रहिए और चलते रहिए। जिंदगी में बहुत कुछ है जो अभी जीतना है, हासिल करना है। जिनके लिए आज दिन इसलिए खास है क्योंकि आज वेडिंग एनिवर्सरी है उनकी। सो यार एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहिए। जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, आपके रिश्ते को डिसबैलेंस करेंगे और आपको अलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि ये कहना चाह रही हूँ कि एक दूसरे के साथ अगर विश्वास का रिश्ता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। और जिनके लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आइए आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इट हैपेंस अंडर एप्स अताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और इस बार इट हैपेंस का साथ जो इस वक्त आपके साथ है बहुत ही खास और स्पेशल है, क्योंकि हम जानते हैं कि यार ये सुबह आपके लिए बहुत स्पेशल है। वैसे चलिए बात करते हैं अपने गोल्स की। यू नो, हम सबके पास ना एक विश लिस्ट होती है और एक होता है गोल। मुझे ये करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये पाना है, ये होती है आपकी विश लिस्ट। लेकिन पता आपको विश लिस्ट और गोल में फर्क क्या होता है? देखिए, विश लिस्ट सिर्फ आपके दिमाग में होती है। आप उसे कभी भी ना एक पॉसिबल वे के जरिए आप उसे अपनी ड्रीम से सच्चाई नहीं बना पाते। और गोल जो है वो कैलेंडर में होता है। सो अगर आप अपने सपने के आगे कोई डेट नहीं लिखते हैं ना, तो वो सपना सपना ही रह जाता है, आपकी विश लिस्ट ही रह जाता है। तो इसलिए अपने सपने को अगर आप सच्चाई में सामने लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा स्टेप लीजिए, चाहे सबसे छोटा ही क्यों ना हो वो स्टेप, बट उठाइए जरूर, ताकि आप अपने गोल की ओर बढ़ सकें। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

क्या कहेंगे, आय हाय, बड़ा ही फेमस डायलॉग है। अगर फेल हो गए तो हमारा दिमाग यू नो हमेशा हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन आज सताक्षी आपसे एक सवाल पूछती है, अगर आप कामयाब हो गए तो, इस अगर को कभी दूसरे एंगल से देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी आदत है ना नेगेटिव साइड को ही देखने की। यू नो लोग हमेशा आपके रिजल्ट पर ताली बजाते हैं, आपकी मेहनत पर नहीं। तो लोगों की बातें सुनना बंद करिए और अपने काम की आवाज को थोड़ा और तेज करिए। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए ठापंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये grocery पास वाले shop से ले सकते हैं ना?
2: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butchers supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: बिस्वानी 1701 AM सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस. अभी हम आ गए हैं गानों की हैट्रिक में. जी हाँ, चलिए मिलकर लगाते हैं गानों की हैट्रिक. तीन बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए सताक्षी लेकर आई है और आज का ये पहला ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए.

गानों की हैट्रिक आप एंजॉय कर रहे हैं। हमारे तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये सफर है जिसे आप हर रोज सुनते हैं रेडियो ब्रिस्बेन पर 88.5। आइए इस सेगमेंट में अभी ये अगला ट्रैक एंजॉय करते हैं।

कानों की हैट्रिक में हमारे तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये लास्ट ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। बहुत सारी बातें हैं जो कानों की हैट्रिक के बाद आपसे होने वाली हैं, सो तैयार रहिए उसके लिए और इस अगले ट्रैक के साथ आइए बढ़ते हैं सफर में आगे।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

तक रेडियो बरसाने पर सदाक्षी के साथ हैं आप और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस। भाई रेंटल बॉयफ्रेंड, इस टर्म को सुना है आपने? हाँ, देखिए ये टर्म जो है इसकी शुरुआत हुई थी जापान से और अब ये इंडिया में भी अपने पैर पसार रहा है। रेंटल बॉयफ्रेंड क्या मतलब है इसका? भाई जैसा कि वर्ड बता रहा है, रेंटल बॉयफ्रेंड मतलब किराए पर बॉयफ्रेंड का मिलना। अच्छा, ऐसा होता था ना कि पूरे ग्रुप में सबके पास अपने बॉयफ्रेंड्स हैं लेकिन एक सिंगल बंदा बैठा हुआ है और वो डायलॉग मारता था ना कि बॉयफ्रेंड क्या किराए पे मिलता है जो उठा लूं। तो हाँ भाई, अब बॉयफ्रेंड किराए पे मिलता है और सोशल मीडिया साइट्स के जरिए, सोशल नेटवर्किंग के जरिए ये रेंटल बॉयफ्रेंड आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, और ये बहुत जल्दी ट्रेंड चल पड़ा है और इस ट्रेंड के चलते लोग मूवीज जाना हो, शॉपिंग पे जाना हो, रेंटल बॉयफ्रेंड हायर कर सकते हैं और स्टेटस सिंबल की तरह है ये। लेकिन ये ट्रेंड जब मैं पढ़ रही थी, जापान तो एक खैर अदर लेवल कंट्री है, लेकिन इंडिया के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि यार कहाँ आ गया है सब, किस ओर आज का यूथ जा रहा है, लोग जा रहे हैं। मतलब हम बेसिकली देखा जाए तो ये स्टेटस सिंबल है ना कि भाई सबके पास है, हमारे पास नहीं है तो हमें भी दिखाना है कि हमारे पास तो है, बट क्या ही यूज है इसका? सोचने वाली बात है ना दोस्तों। आई डोंट नो कि क्यों ये स्टेटस सिंबल इतना हाई होता जा रहा है हमारा कि हमें रेंटल बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ रही है। आपका इस बारे में क्या थॉट है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM सताक्षी के साथ हैं आप।

स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में भी देखा और अब हम देख रहे हैं भारत में। हजारों बच्चे सड़कों पर हैं और किस तरह से उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, इस मोमेंट को, प्रोटेस्ट मोमेंट को दबाया जा रहा है, वो देखा जाए तो दोनों साइड मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट का अपना साइड भी है क्योंकि इसके पहले भी पेपर्स लीक होते रहे, लेकिन बहुत सारे सिलेबस चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशन मैनेजमेंट में सुधार भी हुआ है इस दौरान, भारत की बात करूं तो। उसके बाद एकदम से इस तरह का आंदोलन आना, डेफिनेटली स्टूडेंट्स की आड़ में बाकी की पार्टीज अपना मुनाफा तो कमा रही हैं, नो डाउट। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमेशा जब हम सुनते हैं तो वो कहते हैं मैं भारत का नागरिक हूं, मैं जनता का सेवक हूं। तो जनता का सेवक होने का मतलब ये था इस वक्त, इस इतना आंदोलन बढ़ता ही नहीं आई गैस अगर नरेंद्र मोदी जी स्टूडेंट्स के बीच पहुंच जाते। इस मोमेंट में कई नेता शामिल हो चुके हैं, कई अभिनेता अभिनेत्रियां शामिल हो चुके हैं, मतलब बॉलीवुड भी इस मोमेंट में खड़ा है, कई बड़े लोग शामिल हो चुके हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, ये लोग अगर इस मोमेंट का हिस्सा ना बनते जाकर बात करते स्टूडेंट्स से, तो पार्टीज को, जो अदर पार्टीज हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलता और शायद ये हालत नहीं होती। लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल उल्टा काम किया है, उन्होंने बच्चों को पर डंडे चलवाए, उन्होंने बच्चों को मरवाया और उन्हें सप्रेस करने की, उन्हें दबाने की कोशिश की, जो आई थिंक क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आई गेस ये गलत है। आपकी राय क्या है हमारे साथ बांटिएगा। फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चल रहे हैं, एंजॉय कीजिए और सताक्षी को सुनते रहिए इट हैपेंस में।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSO